0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, टाइम हुआ है 5:04 और आज है गुरुवार 9 जुलाई है। देखते ही देखते जुलाई के महीने में आगे बढ़ रहे हैं। नई सुबह का मतलब सिर्फ नया दिन नहीं है बल्कि नए मौके भी होते हैं। कल जो रह गया उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए और आज जो कर सकते हैं उसकी शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी स्माइल, एक अच्छा सा गाना, कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है एक दिन को बेहतर बनाने के लिए। तो RM2 रेडियो मस्त आपके दिन को अमेजिंग बनाने के लिए यही पर है हाजिर। आप बस कनेक्टेड रहिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio.

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार, रहती है गोरी गोरी गरीब किसान पिछोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय की कहे, की कहे, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।

0: आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
0: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगा।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात, ले ले बढ़ा दो हाथ,
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: बोल दो बापू।
1: हाँ बोल दे बेटा।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Yes, good morning जी, Rising Shine पर आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं आपका अपना RM2 Radio with Nirmani. एंड आज हम याद कर रहे हैं एक इंडियन सिनेमा के एक लेजेंडरी फिल्म मेकर और एक्टर को, गुरुदत्त जी को, जिनका जन्म ना 9 जुलाई को हुआ था. एंड उनकी फिल्म्स सिर्फ कहानियां नहीं थी बल्कि इमोशंस थी, पोएट्री और जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास था. एंड आज भी उनकी डायरेक्शन और एक्टिंग को लोग दिल से याद करते हैं, तो उनकी याद में चली हो जाए मूवी प्यासा का एक अमर नगमा, जाने वो कैसे लोग थे.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: कभी कभार एक गाना ही एक इंसान के सारे इमोशंस को बाहर ले आता है और गुरुदत्त जी ने उस किरदार को बखूबी से निभाया है तो उनकी याद में दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड कनेक्टेड हो चुके हैं हमारे साथ हम मॉर्निंग मॉर्निंग में चांदनी जी कैसी हो आप ब्यूटीफुल लेडी आप बोल रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग राइज करना सुबह सुबह थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन रेडियो ऑन करते ही आप फिट हो जाते हो Oh, that's so nice of you. Jason ji bhi saath de rahe hain, drive kar rahe hain aur next gana maang rahe hain apne doston ke liye. Apne liye bhi, Timba ke liye, Jiban, Obiran, Angotia, Akash, Sharvan, Mevin ke liye to ho jaye aap. Khoobsurat logo ke liye ek pyara sa gana.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good morning. सुबह के 6 बजे हैं. जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे गीता जी नमस्कार.
5: नमस्कार निर्मली सभी को हमारा नमस्कार. पेश आज की मुख्य खबरें. कोटडो में आवा टेक्नोपार्क का आधिकारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया. 54,000 वर्ग मीटर में फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश और 7 भवनों की योजना है. उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क. परियोजना से 4,000 से ज्यादा कुशल नौकरियां पैदा होने की संभावना है. मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुँच का अवसर होगा. स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को आज याद किया जाएगा. 9 जुलाई 1964 को पुसलाफायत में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान समुद्र में डूबने से 7 युवा सैनिकों की मौत हुई थी. हादसे के 62 साल बाद भी शहीद जवानों की यादें जीवित हैं. स्मारक स्थल पर आज आयोजित किया जाएगा वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह. जोनाथन रिशा का शुनकु याम टू का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जनता से सहायता की अपील की है. 11 जून 2026 को मिडलैंड्स के शासिडो विला क्षेत्र में ये शव मिला था. MCIT और CCID की टीम मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है. जांच में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने पर 5,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है. और विदेश में अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किए गए हैं. और अब मौसम संबंधी जानकारियां.
0: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
5: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं. आज सुबह बादल घिरे रहेंगे. पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी. दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे. ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी. न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा. 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है. और दोपहर बाद तक मौसम की समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा. सूर्योदय आज सुबह 6:40 पर और आज शाम 5:44 पर सूरज ढल जाएगा. ये थी अब तक की खबरें. पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. धन्यवाद. नमस्कार और शुभ दिन.
3: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
3: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जाओ ना तुसी ना जाओ यही रह लो कनेक्टेड आरएम जो वीडियो मस्ती के साथ इस नीलमणी और अभी आप कनेक्टेड हो चुके हैं राइज एंड शाइन शो के साथ लेकिन अभी मॉर्निंग वाइब को सेट कर लेते हैं इस नेक्स्ट गाने के साथ आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे थोड़ी ही देर में अभी के लिए इस गाने को एंजॉय करते हैं

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वाह क्या बात है. गाने में ही आज का मोटिवेशनल कोट मिल गया हमें. उड़ियो ना डरियो कर मनमानी. एंड आपको बता देते हैं कि आपके मैसेजेस सेफ एंड साउंड हम तक पहुंच गए हैं. आप है कुमार दाबीचंद जी पेरबिया से हमें सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग. ललित जी भी कनेक्टेड है हमारे साथ और बिंदिया कालू जी गुडलैंड से साथ दे रही है. और आज है उनके उनका बर्थडे और आपका नाम है प्रतिमा कालू जी. एंड मेनी ब्लेसिंग्स विशेज बिंदिया जी की तरफ से, सोना जी, सनी जी, स्वयं की तरफ से एंड ओला कालू फैमिली की तरफ से. वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क का आधिकारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर पर फैली ये परियोजना 42 मिलियन यूरो की है, जिसमें 7 भवनों के निर्माण की योजना है। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और यूएनडीपी द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुंच का अवसर होगा। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को आज याद किया जा रहा है। 9 जुलाई 1964 को पसलाफायत में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान समुद्र में डूबने से 7 युवा सैनिकों की मौत हुई थी। स्मारक स्थल पर आज श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। जोनाथन रिशा काशुनकु याम टू का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। 11 जून 2026 को मिडलैंड्स के शासेडो विलाओ क्षेत्र में ये शव मिला था। जांच में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने पर 5,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कल शाम कोड्डो में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये टेक्नोपार्क 54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 42 मिलियन यूरो के निवेश का प्रावधान है। कुल 7

0: भवन बनाए जाएंगे जिनमें से दो पहले ही संचालित हो चुके हैं। आवा टेक्नो पार्क उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। इस परियोजना में 4000 से ज़्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता है। ये ऐसे कुशल रोजगार होंगे जो विज्ञान टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता आधारित उद्योग से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार युवा मॉरिशस वासियों को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर प्रयोगशालाओं, स्मार्ट उत्पादन इकाइयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर मिलने चाहिए। आवा टेक्नोपार्क को नई अर्थव्यवस्था की ओर खुलने वाले महत्वपूर्ण द्वारों में से एक माना जा रहा है। ये बजट 2026-2027 की उस दृष्टि के अनुरूप हैं जिसमें देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Ces emplois ne sont pas seulement des emplois, ce sont des emplois qualifiés, des emplois d'avenir, des emplois dans une industrie qui associe la science, la technologie et la qualité. Ce sont les emplois que nous voulons pour la jeunesse mauricienne. Une jeunesse qui ne doit pas être condamnée à choisir entre rester à Maurice et réussir dans le monde. Notre devoir est de faire de sorte qu'elle puisse le faire les deux, c'est-à-dire rester à Maurice et participer au monde. C'est cela la vraie ambition. L'avenir de nos jeunes ne va pas se construire pas seulement dans les secteurs traditionnels. Il se construira aussi dans les laboratoires, dans les centres de conception, les unités de production intelligente, la qualité réglementaire, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les industries exportatrices. Notre jeunesse ne demande pas la charité. Elle demande des plateformes, elle demande des opportunités, elle demande un pays qui lui ouvre ses portes. Ava Technopark est l'une de ces portes.
0: आवा टेक्नोपार्क में विशेष रूप से बलून कैथेटर्स का निर्माण किया जाता है। ये छोटे चिकित्सा उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डॉक्टर विशेष उपचार प्रक्रियाओं के दौरान करते हैं, जैसे संकरी या धमनियों के बंद होने के इलाज में। प्रधानमंत्री ने कुतुदो टेक्नोपोल के लिए सरकार की दृष्टि का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि इस क्षेत्र को इनोवेशन टेक्नोलॉजी और नई औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उनको सुनते हैं।
1: J'ai dit dans le budget 26-27, le gouvernement a défini une orientation stratégique très claire. Nous construisons une future-ready economy, une économie plus innovante, une économie prête pour l'avenir, une économie qui innove, une économie qui produit, une économie qui exporte, une économie qui utilise, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle pour améliorer sa compétitivité. Une économie où les micros, les petites et moyennes entreprises peuvent évoluer avec moins de contraintes. Vous disiez tout à l'heure que avant vous ne pouviez pas vendre vos cafetières ici à Maurice. Pourquoi? On les fabrique à Maurice et on importe des autres pays. Heureusement que le ministre a pu corriger cela, le ministre Béchou. Une économie capable de s'adapter aux chocs et aux mutations du monde. Dans cette perspective, les travaux pour le développement d'une zone économique spéciale axée sur la technologie à Côte d'Or ont déjà démarré. Le centre de Côte d'Or offrira un écosystème tourné vers l'avenir, aux industries numériques et aux entreprises axées sur la technologie. De plus, la participation de Maurice à l'initiative America India Connect de Google renforcera davantage la connectivité numérique.
0: शी ट्रेड मॉरिशस हब पहल के तहत कल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर अफ्रीकी बाजारों में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए AFCFTA के मौकों को खोलना विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। दो दिनों तक इसमें ठेकेदार, व्यापार विशेषज्ञ और नीति बनाने वाले अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया से मिलने वाले मौकों पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा समझौता है जो 54 अफ्रीकी देशों को एक साथ लाता है और इसका मकसद 1.4 बिलियन से ज़्यादा उपभोक्ताओं वाला एक एकीकृत बाजार बनाना है। विदेश मंत्री धनंजय रामफल के लिए AFCFTA की सबसे खास बात व्यापार में महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित एक प्रोटोकॉल है। एक ऐसी विशेषता जिसे किसी व्यापार समझौते के लिए पहली बार शामिल किया गया है, उनको सुनते हैं विवरण सुमेराव बराली का।
2: Tout le temps, moi, j'ai dit, nous aussi, ben, plusieurs accords, mais nous pas vraiment venti, ça m'a l'accord, là.
3: हमने कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं जिनके बारे में ज्यादा बताते नहीं हैं, इसलिए साझेदार और ठेकेदार इनके बारे में कम जानते हैं या नहीं जान पाते हैं। आज मेरे मंत्रालय ने इस कार्यशाला का आयोजन किया ताकि महिला ठेकेदार ज्यादातर मौकों का फायदा उठा सके और अपने कारोबार में समृद्धि पा सके। ये निराले समझौतों में से एक है जिनमें शामिल प्रोटोकॉल खास रूप से महिलाओं के लिए है।
0: मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उनसे कैबिनेट में संभावित फेरबदल के बारे में भी पूछा गया। हालांकि वित्त मंत्रालय संभालने के संभावित उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्री ने फिर कहा कि सरकार के गठन से जुड़ा कोई भी फैसला प्रधानमंत्री ही करते हैं, उनको सुनते हैं।
2: Et là, nous proposons le budget. Et s'il y a un remaniement, bien sûr, c'est au Premier ministre de décider.
0: Money laundering के आरोपी चीनी बिजनेसमैन लिहाई अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगे शुरुआती आरोप को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। वे कल पोर्ट लुइस की अदालत में पेश हुए। लिहाई को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था जब 2014 में हांगकांग में उनके पर्सनल अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। उनके वकील मनी लॉन्ड्रिंग के शुरुआती आरोप की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी सुमेरा अकबर अली के साथ।
3: उद्योगपति के वकील का कहना है कि जिस जुर्म की बुनियाद पर ये इल्जाम लगाया गया उसकी साफ पहचान नहीं की गई। उनका ये भी कहना है कि पेश किए गए सबूत उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी शक पैदा नहीं करते। प्रतिरक्षा का ये भी इल्जाम है कि प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक जिस वाकये का जिक्र है वो नवंबर 2014 का है, जबकि अस्थायी आरोप एक साल बाद लगाया गया। प्रतिरक्षा के अनुसार पिछले 8 महीनों में FCC की जाँच में कोई खास तरक्की नहीं हुई है। लिहाई जो यीहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं, पाइस मौत सिटी परियोजना के प्रमोटर हैं। ये परियोजना मंगल के दिन राष्ट्रीय सभा में पूछे गए एक सवाल का भी मरकजी मौजू रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने दुमेनली पाइस मौत सिटी परियोजना में सामने आई अनियमितताओं और यीहाई के खिलाफ उठाए गए कदम की तफसील भी पेश की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के मुताबिक ये मामला मई 2026 में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को भेजा गया था। इसके अलावा संबंधित पक्षों की तरफ से एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई।
0: स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास में ये एक ऐसा घाव है जो आज तक नहीं भरा है। 62 साल पहले 9 जुलाई 1964 को पुस्लाफायत में एक साधारण प्रशिक्षण अभ्यास एक भयानक हादसे में बदल गया था, जिसमें समुद्र की ऊंची लहरों ने 7 युवा सैनिकों की जान ले ली थी। आज सुबह स्मारक स्थल पर आयोजित वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके बलिदान को याद किया जाएगा। 11 जून 2026 को शासे डुविलाओ मिडलैंड्स में जोनाथन रिशो काशुन कुयाम टू का शव मिलने के बाद पुलिस जनता से अपील कर रही है। CCID की मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी रखी हुई है। जांच को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। आम जनता सेंट्रल CID से 2080868 या 5499-8477 पर संपर्क रख सकती हैं। एयर मॉरिशस ने पुष्टि की है कि कल मॉरिशस से रेयून जाने वाली उड़ान MK 238 में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग यात्री की विमान में चढ़ने के दौरान तबीयत अचानक खराब हो गई। विमान के क्रू सदस्यों ने तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान किया और हवाई अड्डे के डॉक्टर के विमान में पहुंचने तक हर संभव सहायता दी। जांच के बाद यात्री को विमान से उतारकर आगे के उपचार के लिए एयरपोर्ट मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद यात्री का निधन हो गया। एयर मॉरिशस ने दिवंगत यात्री के परिवार, खासकर उनके साथ यात्रा कर रहे रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। एयर मॉरिशस ने अपने क्रू और हवाई अड्डे की चिकित्सा टीम को उनकी तत्काल कार्रवाई और पेशेवर सेवाओं के लिए धन्यवाद भी दिया।

और विदेशी खबरों में अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किए गए हैं। ईरान पर हमलों का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लिया गया है। और पाकिस्तान के एक बोइंग कार्गो विमान का मलबा मिल गया है। 27 साल पुराना ये विमान मंगलवार को शारजाह से कराची आने के दौरान अरब सागर के ऊपर रडार से गायब हो गया था। विमान में सवार 5 सदस्य चालक दल की तलाश जारी है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से कराची आ रहे विमान ने नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी की सूचना दी थी। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और दोपहर बाद को समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:46 पर और आज शाम 5:44 पर सूरज ढल जाएगा।

0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क का आधिकारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर में फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश, 7 भवनों की योजना शामिल है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को आज याद किया जा रहा है। 9 जुलाई 1964 को पोस्ट लफायत में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान समुद्र में डूबने से 7 युवा सैनिकों की मौत हुई थी। हादसे के 62 साल बाद भी शहीद जवानों की यादें जीवित हैं। और जोनाटन रिशार काशुन गुयाम टू का शव मिलने के बाद पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। 11 जून 2026 को मिडलैंड्स के शासेडोविला क्षेत्र में शव मिला था। एनसीआईटी और सीसीआईडी की टीम मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। जांच में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने पर 5,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजल का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: महात्मा गांधी रोड कॉटेज में 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती प्रियम वडा ओगी, पैदाइश नाम महादेव और जो प्रियम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे ऋषि कुमार ओगी के घर महात्मा गांधी रोड कॉटेज से उठाकर काहो अकास्या कॉटेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। सोशल वेलफेयर रोड श्रीमें घोनिये में 58 साल की 58 ईयर ओल्ड की श्रीमती दमयंती भुकन, पैदाइश नाम

रामखिलावन और जुफी से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति राज बुकन के घर सोशल वेलफेयर कोर्ट में घोइने से उठाकर कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 56 रॉयल रोड लेस्कालिये में 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती पद्मावती कोहा पैदाइश नाम रामधयान

Basse Karang l'escalier qui chmoshan bhumi le chai chai ki cremation today at 3 pm Boplan Road Kalbas mein 68 saal ke 68 year old ke Shri Navin Chandra Jeevan jo Navin se zyada jane jaate the aur Lady Ram Gulam school mein purv attendant the ki mrityu ho gayi hai unki arthi baad mein उनकी पत्नी ललिता जीवन के घर बोपलों रोड कालबास से उठाई जाएगी। टागो लेन कालबास में 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती धनवंती पलागम पैदाश नाम कुलीचन और जो धनु से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर टागो लेन कालबास से उठाकर बामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Cremation today at 2 p.m. Karim Bokas Lane, L'Escalier Road, Plain Mayon, 50 saal ke 50 year old ki, Janab Mohammad Samad Khan, Karim Bokas, jo Samad se zyada jane jate the, intikal kar gaye hain. Janaza aaj subah 10 baje, unke ghar Karim Bokas Lane, L'Escalier Road, Plain Mayon se nikal kar, प्लेन मायों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 एम। कालीमाई रोड रिविया जुरान पा में 19 साल के 19 ईयर ओल्ड की श्री असागेन रंगास्वामी जो अविसेन से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पिता सीवेन रंगास्वामी के घर कालीमाई रोड रिविया जुरान पा से उठाकर वेंटिलास्कोव का कब्रस्तान ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 पीएम। नंबर 177 पायुत में 66 साल के 66 ईयर ओल्ड के श्री तिलक संपत जो विष्णु से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 177 पायुत से उठाकर अली ब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 एम। पिलग्रिम सेबास्टोपोल में 43 साल के 43 ईयर ओल्ड के श्री ओमियादेव इसेबिया जो रितु से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी पूनम इसेबिया के घर पिलग्रिम सेबास्टोपोल से उठाकर लिस्यू सेबास्टोपोल का कब्रस्तान ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 नून। सैनाम रोड सुरीनाम में 71 साल के 71 ईयर ओल्ड की श्री जयराम गोविंद जो राम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी बेटी समीला बाई गोविंद के घर सैनाम रोड सुरीनाम से उठाकर ग्रांबोआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 पीएम। क्लोजेल रोड फिनिक्स में 33 साल के 33 ईयर ओल्ड की श्री कृष्णा हरक जो जेफ से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पिता सुंदर हरक के घर क्लोसेल रोड फिनिक्स से उठाकर सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 एम। कतानिया इटली में 60 साल के 60 ईयर ओल्ड के श्री विजय बहादुर जो विजय से ज्यादा जाने जाते थे और जो पहले रामदानी रोड प्लेंडी पापाई रहते थे की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार कतान्या इटली में आज दोपहर बाद के 3 बजे किया जाएगा। पायों के रोड मुसलमान सेंट एंटोन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाश नाम जोधवा और जो इंद्रानी से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उनके बेटे विमल राजकुमार के घर पायों के रोड मुसलमान सेंट एंटोन गुडलैंड से उठाई जाएगी। रिजर्वा रोड हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में 81 साल के 81 ईयर ओल्ड की श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद जो प्रेम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके घर रिजर्वा रोड हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 एम।

0: शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: NBC Radio.TV.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ऐसे ही आपके साथ में वक्त कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जाने से पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज है फैशन डे। इन फैशन का मतलब सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना है। चाहे आपका स्टाइल ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न, असली फैशन वही है जिसमें आप खुद को सबसे कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। सो हैप्पी फैशन डे टू यू, और इसी फैशन डे की स्टाइलिश वाइब्स के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना स्टाइल हमेशा ऑन रखना और स्माइल भी ऑन रखना। मैं हूं निर्मनी, मिलूंगी आपसे फिर, तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वाइबिंग विद योर RM2 रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: A very good morning, my dear friends. सुबह के 7:06 हुए हैं. Thursday 9th of July. चलो चलो चलो चलो थर्सडे भी पहुंच गए हम. देखा अभी ये जुलाई का महीना शुरू ही हुआ है, लेकिन हमारे इस जुलाई के महीने में एक हफ्ता ऐसे निकल गया जैसे कुछ पता ही नहीं चला. मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त जो है ना बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो ऐसा करो, जो आप कल करना चाहते हो उसको आज करके ख़त्म करो और अपने सपनों पर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, क्योंकि अगर आप सोचते रह जाओगे तो वक्त निकल जाएगा. वक्त के साथ साथ पता है घंटे निकल जाते हैं, उसके साथ दिन निकल जाते हैं, उसके साथ हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, फिर साल निकल जाता है. ओके, 7:07 हम साथ साथ हैं और महीना भी साथ है. क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या पकड़ा है, वाह. चलो तो वेदिता आ गई है साथ देने के लिए आपके मॉर्निंग बीट में. अभी थोड़ी देर में हम एक गेम के साथ आ रहे हैं. अब किसको विनर बनना है उसके लिए तो मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा जब मैं सवाल करूंगी. अभी थोड़ी ना सवाल कर रही हूँ, अभी तो हम गाना सुन रहे हैं भाई.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलो जी, as promised, अभी मैं आपके लिए गेम लेकर आई हूँ जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको इनाम जीतना है. जी हाँ, MBC के साथ खेलो और आपको मौका मिलेगा टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 25th ऑफ जुलाई 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC Pi. जी हाँ, यहाँ पर आप अपने बीते दिनों को याद करेंगे और उन लम्हों को याद करेंगे जिसे आप एक बार फिर से जीना चाहेंगे. ये जो 90s का डर था, 70s कहाँ चली गई बेटा, तू इतने भी बुरी नहीं है. हाँ, तो मैं बात कर रही थी, ये जो 90s का दौर था, यहाँ पे जो एक से एक बढ़कर रोमांटिक गाने आए थे, तो अभी अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि ये जो कॉन्सर्ट है अभिजीत भट्टाचार्य का, इसमें आप इसका हिस्सा बने. अब आपको हिस्सा कैसे बनना है, आपको मेरे सवाल का जवाब देना है. देखो भाई, आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं. मतलब कि यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो कि थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, और टेढ़े मेढ़े होते हैं आपको मुझे बताना है. जी हाँ, यहाँ पर ना क्या करना है ना, आपको दिमाग को ना थोड़ा सा भगाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि अगरबत्ती की मोम को हम क्या बोलते हैं. अब आप बोलेंगे व्हाट विदिता, मॉर्निंग में क्या है लड़की, क्या पी के आई है, क्या खा के आई है मॉर्निंग में. देखो, मैंने बोला ना फनी होगा, लेकिन सोचना होगा. अगरबत्ती की मॉम को हम क्या कहेंगे, किस नाम से बुलाएंगे, आपको जवाब देना होगा ऑन 5491294.
1: RM2 Radio Musty. Feel the Musty.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: अंजलि अंजलि तुम सही जवाब दे के आई? अंजलि नहीं, ये सुनील शेट्टी की आवाज मुझसे नहीं होती है। आप लोगों ने ट्राई किया कभी? अभी हम, मैं, नीतू और नीलमणि, हम तीनों ट्राई कर रहे थे, किसी से नहीं हुआ। किसी ट्राई करना है फिर से? यू वांट टू ट्राई? नहीं, उसने बोला नहीं, रहने दो, नहीं कर सकते। 7:19 हुए हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मॉर्निंग बीट। यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था, सुनील शेट्टी के चक्कर में मेरी आवाज जा रही है। हाँ, तो हमने आपसे पूछा था अगरबत्ती की मोम को क्या कहते हैं, अगरबत्ती की मोम को क्या कहते हैं? अगरबत्ती की मोम क्या कहते हैं? मोमबत्ती। हाँ, मोम है ना, मोम, मोमबत्ती। नीतू तो नहीं जान पाई, कोई बात नहीं, लेकिन नीलमणि ने नोटिस कर लिया था, लेकिन मैं उसको नहीं दे सकती ना। यहाँ पर हम लोगों ने लकी ड्रॉ किया है, जितने भी लोगों ने हमें सही जवाब दिया है, तो सही जवाब देकर किसका नाम आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर नाम आता है विनय लंगर का, जो रहते हैं गौबे। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अभी हमने अभिजीत दा का गाना सुनाया आपको, आई होप आप खुश हो गए होंगे। सोचो ऐसे ऐसे गाने जब निखर कर आएंगे, उभर कर आएंगे इस कॉन्सर्ट में, जो कि है गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइविंग कॉन्सर्ट, सैटरडे 25th of July 7:30 PM SBICC पाई में हो रहा है। तो यहाँ पर आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो टाइमलेस मेलोडीज हैं, लेजेंडरी हिट्स हैं, प्योर म्यूजिकल मैजिक, आप इसको जी सकते हैं और आप इसको यादगार बना सकते हैं। तो आपको मिल रहा है एक टिकट, आपको आकर MBC कलेक्ट करना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ। सुबह 9:30 से दोपहर के 3 के बीच आपको आकर ये टिकट ले जाना होगा। एंड मैं आपको बताऊँ, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं टिकट, तो इसकी प्राइस जो है वो 850 रुपीस से शुरू होता है, और ये अवेलेबल है एट muchk.mu एंड रेजो उतायु पर। और रिजर्वेशन के लिए यू कैन कॉल द हॉटलाइन 466-9999।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. 800 grammes de pilon de poulet Prodigal à 179,95 € et le pack de 100 serviettes Softpack Green à 44,95 €. Pas oublié, Excan to pay te gagne plus points Weave.
4: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Musty.
5: Kabhi spicy, kabhi sweet, music lovers ki heartbeat.
6: Tak tak Bollywood.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अब नोरा फतेही इतना अच्छा बेली डांसिंग करेगी तो लड़के के तो होश उड़ेंगे उड़ेंगे, लड़कियां भी बेहोश हो जाती हैं, कहती हैं कि हम ऐसा डांस कब करेंगे। भाई वो अपनी बॉडी पे बहुत काम करती हैं, वो डांस करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वो डाइटिंग करती हैं, और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठकर थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं तो हमारे गाने चलते हैं, इसमें डांस कर लिया करो, थोड़ा सा कमर हिलाओगे तो ये जो कमरा हो गया है कमर, वो फिर से कमर बन सकता है। हाँ ये मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत हो गया ठंड का बहाना, ठंड का बहाना नहीं चलेगा, ठंड में भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। चलो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप लोग कपालभाति कर सकते हैं बैठे बैठे, स्पेशली लेडीज़ जब आप ड्राइव करते हो ये करो, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। चलिए तो इसी के साथ अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास एक वाउचर है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से। अब मैं ऐसे तो नहीं दे सकती ना, आज किसी का बर्थडे है तो उनको देना पड़ेगा। किसका बर्थडे है ये जानेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे जिनका नाम यहाँ लकी ड्रॉ पे आएगा। अब अगर आपके आस पास में कोई है, कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर जिनका आज बर्थडे है, आप उनको विश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये वाउचर उनको मिले, हाँ यू रियली वांट इट या, तो आपको करना क्या है, उनका नाम और उनका फोन नंबर आप मुझ तक पहुंचा दो ऑन 5499-1294।

0: Yes, hello, Mahen.
1: Oui, bonjour.
0: Yes, good morning. How are you?
1: Fine, and you?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एक्चुअली पता है हमारे कंपटीशन चल रहा था और किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया है. वो हाँ, आप गाना गाते हैं महेन?
1: नहीं नहीं,
0: आप गाना नहीं गाते, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं? कि आप हिमेश रेशमिया को बहुत उनकी आवाज में गाना गा सकते हो.
1: नहीं नहीं,
0: आप ट्राई करना चाहोगे? मैं आपका नाम सिलेक्शन में डाल देती हूँ, आपको सिलेक्ट कर सकती हूँ मैं.
1: No, I don't know how to sing.
0: No, you just have to say झनक दिखला चा, ऐसे कुछ. You can do it.
1: आप रेडियो से बोल रहे हैं?
0: No.
1: You're from radio. Yeah. Because it's my birthday. Thank you.
0: Oh my God. रोज पकड़ी जाती हूँ मैं.
1: कौन बात कर रहा है? नीलम जी
2: फ्रॉम रेडियो मस्ती.
0: रेडियो मस्ती और विनीता आपके साथ बात करी है और ये गुस्ताखी मैं रोज़ सुबह करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रोज़ सुबह मुझे कोई ना कोई है जो कोई ना कोई क्या, सब कोई पकड़ लेते हैं. शुरू में तो बड़ा मज़ा आया था, लेकिन अब सब रेडियो सुनते हैं, सबको पता है कि इस टाइम बर्थडे पे अगर किसी का कॉल आए तो विनीता ही होगी. सो थैंक यू सो मच महेन. आप लेकिन लेकिन एक बार आप गा कर सुनाओ ना, झलक दिखलाओ चाओ, ट्राई ना.
1: झलक दिखला जा.
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है. इसी बात पे लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से मैं आपको दे रही हूँ एक वाउचर, विच यू हैव टू कम एंड कलेक्ट एट दी एमबीसी. ओके, अपने आईडी कार्ड के साथ आइएगा आज नहीं तो कल. आपके पास दो दिन है, आज नहीं तो कल.
1: ओके
0: सो सुबह. ओके, थैंक यू सो मच महेन. बहुत जल्दी में हो, काम पे जा रहे हो?
1: काम में हूँ.
0: काम पे हो? ओ माय गॉड. ओके, सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू बहुत बहुत.
0: थैंक यू जी. चलो तो यही होता है मेरे साथ, सब पकड़ लेते हैं मॉर्निंग में. कहाँ मैं अभी उनके साथ ऑडिशन कर रही थी हिमेश रेशमिया का, लगता है मुझे ही गाना पड़ेगा झलक दिखलाऊं जा. झलक अरविंद कह रहे आता हूँ अभी.

0: माँ गाना तो अच्छा गा रही हो मम्मा तेते माँ, लेकिन यहाँ पे घर में हर घर में सुनने में आता है रोटी दे दे मम्मा, कपड़े दे दे मम्मा, ये मम्मा वो मम्मा, सारी चीज़ें मम्मा ही, खुद नहीं करोगे कुछ। चलो कोई बात नहीं, हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या। अरे अरविन आगे मिल तो ले।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलो भाई मम्मा को परेशान करना बंद करते हैं, अरविंद से मिलते हैं। अभी वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल्स तो आज से शुरू ना, तो अरविंद बाकी स्पोर्ट्स न्यूज आपके साथ। गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल आज से शुरू। केवल 8 टीमें बची है, फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड। पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस और मोरक्को के बीच रात्रि के 12 बजे किक ऑफ है बोस्टन में। टूर्नामेंट की शुरुआत से अभी तक फ्रांस फेवरेट है टाइटल जीतने के लिए। इस वर्ल्ड कप में लगातार 5 मैच जीत चुके हैं ले ब्लू। पिछले राउंड में फिजिकल पराग्वे को हराने में कठिनाई हुई थी। किलियान एम्बापे ने पेनाल्टी पर टीम को क्वालिफाई किया था। एम्बापे अब तक 7 गोल स्कोर कर चुका है, मेसी से केवल 1 गोल पीछे। गोल्डन बूट का एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। इस टीम में डेम्बेले, ओलीजे, बाकोला, दुए जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकते हैं। इस मैच में ओगेलिया चुआमेनी ट्रेनिंग कर पाया इस मैच के लिए, पर फुल फिट है खेलने के लिए ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मोरक्को द एटलास लायंस किसी से नहीं डरते, ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड को रोका, नॉकआउट राउंड में नेदरलैंड्स और कनाडा को बाहर किया। इनका गोल्डन एरा चल रहा है, पिछले 34 मैचों का विनिंग स्ट्रीक चल रहा है। इनका एम्ब्लेमैटिक कप्तान अशरफ हकीमी का काम होगा फ्रांस के कप्तान एम्बापे को रोकना, पर हकीमी की आदत है राइट विंग में आगे जाना। ऐसा करेगा तो एम्बापे के लिए अटैकिंग स्पेस खुलेगा। मोरक्को का स्ट्राइकर इस्माइल साइबागी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण नहीं खेल पाएगा। इस टीम में गोलकीपर बुनू को भी उसकी भी अहम भूमिका है, साथ में माजाउई, जाज, उनाही, अलखनूस और रहीमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं मोरक्को में। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट और सेमीफाइनलिस्ट के बीच आमना सामना। फुटबॉल एनालिस्ट कहते हैं टाइट टैक्टिकल फर्स्ट हाफ होगा जैसे 2022 में हुआ था, लेकिन फ्रांस का एलीट स्क्वाड डेप्थ और क्लिनिकल काउंटर अटैकिंग पावर मोरक्को के लिए घातक होंगे। ऊपर से साइबागी नहीं है मोरक्को में, ऐसे में फ्रांस के चांसेस ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर कल 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, संडे सुबह 1 बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे और सोमवार को मंडे मॉर्निंग 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। मतलब इस वीकेंड के बाद 4 सेमीफाइनलिस्ट सामने आएंगे और 4 वापस घर। फ्रांस न्यूज, मैनचेस्टर यूनाइटेड 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी से आंद्रे सांटोस को साइन करने के लिए तैयार है। ब्राजील का इंटरनेशनल खिलाड़ी आंद्रे सांटोस चेल्सी में आया था वास्को द गामा टीम से लोन पर, नॉटिंघम फॉरेस्ट और स्ट्रासबूर में खेल पाया। पिछले सीजन सांटोस चेल्सी के लिए 3 गोल स्कोर कर पाया था और 4 असिस्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड अटलांटा से मिडफील्डर एडिसन को भी साइन करने जा रहा है, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड में ब्राजील का सांबा होगा।

चेल्सी केवल बेचता नहीं खरीदता भी है। जोवानी क्वेंद्रा 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी में आ रहा है स्पोर्टिंग से। 8 साल का कंट्रैक्ट होगा इस नए खिलाड़ी के लिए। टेनिस विंबलडन ओपन में लोकल हीरो बन रहा है आर्थर फेरी। ब्रिटेन का वाइल्ड कार्ड क्वालिफायर फेरी सेमीफाइनल में पहुंचा वर्ल्ड नंबर 10 फ्लावियो कोबोली को हराकर। फेरी वर्ल्ड नंबर 114 था अब तक किसी भी टेनिस टूर्नामेंट में

0: फ्रेंच ओपन के फाइनलिस्ट कोबोली को हराया 6-4 7-6 6-0 से। सेमीफाइनल में फेरी का सामना अलेक्जेंडर वेरेव से होगा। वेरेव ने टेलर फ्रिट्स को हराया। सो पहला सेमीफाइनल नोवाक जोकोविच वर्सेस यानिक सिनर और दूसरा ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड आर्थर फेरी और अलेक्जेंडर वेरेव के बीच। लड़कियों में कोस्टुक सेमीफाइनल में पहुंची पाओलिनी को हराकर, नोस्कोवा भी जीत पाई मेरटेंस के खिलाफ। आज सेमीफाइनल मुचोवा वर्सेस कोको गोफ और कोस्टुक वर्सेस नोस्कोवा। साइकिलिंग टूर डे फ्रांस के पांचवें चरण स्टेज 5 में नेदरलैंड्स के ओलाव कुज की जीत हुई। येलो जर्सी अभी तक नॉर्वे के टॉर्स्टेन ट्राइन के पास है, केवल 28 सेकंड पीछे है यूएसए का सीन क्वीन। डिफेंडिंग चैंपियन पोगाचार 7:53 सेकंड पीछे है। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते आपको बता दें कि आज का जो क्वार्टर फाइनल मैच है, कल का और परसों का, यानी तीन पहले क्वार्टर फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर लाइव दिखाए जाएंगे, और दो सेमीफाइनल, एक थर्ड प्लेस मैच और फाइनल मैच भी एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर लाइव, और एमबीसी रेडियो एमबीसी आरएम2 पर आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे। सो द वर्ल्ड कप विव एमबीसी जियो 4 साल में आता है, एंजॉय करो। भले ही आवाज क्यों ना चली जाए, अभी मेरी आवाज सुनकर आपको पता चल गया होगा हालत क्या है। एनीवे, एंजॉयिंग द वर्ल्ड कप, टेक केयर, बाय बाय।
1: हाँ, कोई बात नहीं अरविंद, हम इशारे इशारे में समझ जाते हैं, आप जब बात करते हो तो हमारी भी आवाज तो चीखते चिल्लाते में ही गई ना, लेकिन फिर भी 8:30 बजे मिलते हैं। ओके,
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Puis cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो जी, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड विश करते हैं माधवी जवाहिर जो कि वेजिपर्स से हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे आपके सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम जीजू महेन के नाम डेडिकेट करेंगे वर्षों की तरफ से, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड वंस अगेन यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, आप हैं रितिशा, कहते हैं कि ड्राइव करते हुए आपको प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू। वेल थैंक यू सो मच आपको भी। और चलिए इसी के साथ अब समय हो गया है अगले गाने के साथ, अब हम बढ़ते हैं किधर, अब हम बढ़ेंगे भोजपुरी समाचारों की ओर, फिर उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर हो रही है आप ही के अपने मॉर्निंग बीट में ऑन रेडियो मस्ती।

0: भोजपुरी में समाचार सुना जा। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क के औपचारिक उद्घाटन काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बगल से करल गल। 54,000 वर्ग मीटर पर फैलल ई परियोजना में 42 मिलियन यूरो के निवेश करल जाए और 7 को भवन के निर्माण के योजना बा। उच्च सटीकता होला चिकित्सा उपकरण के निर्माण में विशेषज्ञता रखेला आवा टेक्नोपार्क। ई परियोजना से 4,000 से जस्ती नौकरी पैदा होने की संभावना बा। मॉरिशस के महिला ठेकेदार लोग खातिर अफ्रीकी बाजार में नवा अवसर के द्वार खुले के उम्मीद बा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड आर UNDP बगल से AFCFTA अवसर पर दो दिन के कार्यशाला के आयोजन करल जाता। 54 अफ्रीकी देश के जोड़े होला AFCFTA 1.4 बिलियन से जस्ती उपभोक्ता होला बड़ा बाजार ले पहुँच के अवसर रही। विदेश मंत्री धनंजय राम फुलबुल्लन AFCFTA में महिला और युवा लोग खातिर समर्पित व्यापार प्रोटोकॉल एगो ऐतिहासिक पहल है। मंत्री धनंजय रामफल ई भी बोलन कि ई प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार है। उनकर से कैबिनेट में संभावित फेरबदल के बारे में भी पूछल गल रहल। हालांकि वित्त मंत्रालय संभाले के संभावित उम्मीदवार के तौर पर उनकर नाम लेवल जाता, पर विदेश मंत्री एक खला फिर से बोलन कि सरकार के गठन से जुड़ल कोनो भी फैसला प्रधानमंत्री ही करेलन। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास में ये गो ऐसा घाव है जो आज लेने भरल बा। 62 बरिस पहले 9 जुलाई 1964 के पुसलफायत में एगो साधारण प्रशिक्षण अभ्यास एगो भयानक हादसा में बदल गल रहल, जेकर में समुन्दर में ऊंचा लहर में 7 गो नौजवान सैनिक के जान चल गल रहल। आज भजिर के स्मारक स्थल पर आयोजित वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह में काम के दौरान शहीद हुई होला इस सब नौजवान लोग के श्रद्धांजलि अर्पित करल जाता और उन लोग के बलिदान के याद करल जाता। मॉरिशस ई पुष्टि करले बाकी काल मॉरिशस से रेनियन टापू जाए होला उड़ान MK 238 में यात्रा करे होला एगो बुजुर्ग यात्री के। विमान में चढ़े वक़्त तबीयत अचानक खराब हो गल। विमान के क्रू सदस्य लोग हाल ही से प्राथमिक उपचार दिलन सा आर हवाई अड्डा के डॉक्टर के विमान में पहुँचे ले हर संभव मदद करलन सा। जाँच के बाद यात्री के विमान से उतार के जस्ती उपचार खातिर एयरपोर्ट मेडिकल पोस्ट ले जाल गल, पर सब कोशिश के बावजूद यात्री के मृत्यु हो गल। मॉरिशस दिवंगत यात्री के परिवार खासकर ओकर संगे यात्रा करे होला रिश्तेदार लोग के प्रति अपन गहरा संवेदना व्यक्त करता। मॉरिशस अपन क्रू आर हवाई अड्डा के चिकित्सा टीम के उन लोग के तत्काल कार्रवाई और पेशेवर सेवा खातिर भी धन्यवाद देवता। और दूसरे देश के खबर में अमेरिका ईरान पर नवा हवाई हमला करता। एकर बाद आज फजर के कुवैत बहरीन और कतर में ईरानी हमला के चेतावनी दे होला मिसाइल अलर्ट सायरन बजे लगल। एकर से पहले काल अमेरिका ईरान पर हमला कर ले रहल और पलटवार करके ईरान बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दगले रहल। कुवैती सेना बोले बा कि वो ईरान से आए होला ड्रोन पर और मिसाइल के नष्ट करता। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाका और दूसर जिला में आज फजर के भूकंप के झटका महसूस करल गल। इस सब झटका के बाद ढेर कोई अपन घर से बाहर निकल गए लंसा। हालांकि अभी ले नुकसान के कोनो खबर नहीं बा। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और नमस्ते।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
3: Morning Bee.
1: beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musti in the mix.
4: These are pretty.

0: एंड यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ रेडियो मस्ती पर ले लो जिंदगी के मजे। सुबह के 8:10 हुए हैं। आई जस्ट होप यू डूइंग गुड। ड्राइव कर रही हैं, काम पर जा रही हैं, मूड थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस दूर भाग गया, बस यही कोशिश कर रही हैं। मौसम कैसा रहेगा अगर ये जानना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं गीता जी से।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी, न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और दोपहर बाद तक समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:40 पर और आज शाम 5:44 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Café, produits du quotidien, entretien, vos essentiels sont là, mais moins chers. Profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires pour toute la famille. Pas oublier, Excan to pay te gagne plus points WIV.
5: On est tous Winners!
6: A good beat for your morning show.
7: Come on.
6: Morning beat. RM2.
2: Radio.

0: Avant le défi, the long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों कहते हैं ना कि जिसका जूता है वही जानता है कि वो कहाँ काट रहा है। इसलिए किसी की ज़िंदगी को देखकर उसके दर्द का फैसला मत करो। कभी-कभी होता है कि लोग महंगे जूते पहनते हैं और वो दर्द

0: रहा होता है, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से वो उसी जूते में बस उस दर्द को झेलते रहते हैं और उसको उतारने में उनको लगता है कि जैसे उनकी इज्जत उतर जाएगी। असल में ऐसा नहीं होता है। आपको किसी ने रोका नहीं है कि अगर आपको कुछ दर्द दे रहा है तो आप उसी में फंसे रहो। दोस्तों, हर इंसान अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा होता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन असली तकलीफ सिर्फ वही महसूस कर पाता है और वो इंसान जो उस तकलीफ को जी रहा होता है। इसलिए बिना पूरी कहानी जाने किसी को जज करना ठीक नहीं है। ओके, तो लाइफ की ये लेसन कभी भूलना नहीं। सो डोंट जज समवन बाय व्हाट यू सी। Every smile may hide a struggle and every silence may carry a story, जो सिर्फ वही समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कभी किसी का दिल दुखाया है ना, तो सॉरी बोलने में कोई इंसान छोटा नहीं होता। हर इंसान कहीं ना कहीं गलती से गलती कर देता है, हमसे भी गलती होती है। तो अगर हमसे भी गलती हुई है तो आज हम सबसे सॉरी कहते हैं। अगर आपको लगता है आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को मिसजज किया है, तो सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जाओगे।
1: Avant tout défi, tout long shift, tout premier pas qui capable sens toujours dit, et n'a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé, first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé.

0: एंड यस यहाँ पर भी खुशियां मनाई जा रही है, स्विट्जरलैंड वाले वो बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल में आपने जगह जो बना ली। तो चलिए इसी के साथ समय भी हो गया है, बड़े हम जानते हैं वर्ल्ड कप मैगजीन में अरविंद हमारे लिए क्या खबरें लेकर आ रही है।
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: रेडियो मास्टर की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: रेडियो मास्टर के साथ
2: वर्ल्ड कप मैगजीन।
0: चलिए भाई, हम क्वार्टर फाइनल के बारे में बात कर रहे थे अरविंद, और आपको तो पता ही है कि सिलेक्शन अभी हो गया है और बाकी
4: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन RM2 पर। सो वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल आज से शुरू। केवल 8 टीमें बची हैं, फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड। आगे जाने से पहले आपको बता दें कि MBC TV यानी MBC स्पोर्ट्स 11 पर 3 क्वार्टर फाइनल, यानी पहले 3 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल, 1 थर्ड प्लेस मैच और द ग्रैंड फाइनल आप लोग देख पाएंगे लाइव MBC स्पोर्ट्स 11 पर। सो पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस और मोरक्को के बीच रात्रि के 12 बजे किक ऑफ बोस्टन में। टूर्नामेंट की शुरुआत से अभी तक फ्रांस फेवरेट है टाइटल जीतने के लिए। इस वर्ल्ड कप में लगातार 5 मैच जीत चुके हैं ले ब्लू। पिछले राउंड में फिजिकल पाराग्वे को हराने में कठिनाई हुई थी। किलियान एम्बापे ने पेनाल्टी पर टीम को क्वालिफाई किया था। एम्बापे अब तक 7 गोल स्कोर कर चुका है, मेसी से केवल 1 गोल पीछे। गोल्डन बूट का एक्स्ट्रा मोटिवेशन है इस टीम में। डेम्बेले, ओलीजे, बाकोला, डुए जैसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी डिफेंस को तोड़ मरोड़ सकते हैं। ओगेलिया चुआमेनी ट्रेनिंग कर पाया पर फुल फिट है खेलने के लिए ये अभी तक पता नहीं। मोरक्को द अटलास लायंस किसी से नहीं डरते, ग्रुप स्टेज में ब्राजील को रोका, नॉकआउट राउंड में नेदरलैंड्स और कनाडा को आउट किया। इनका गोल्डन एरा चल रहा है, पिछले 34 मैचों का विनिंग स्ट्रीक 34 मैच विनिंग स्ट्रीक चल रहा है। इनका एम्ब्लेमैटिक कप्तान अशरफ हकीमी का काम होगा फ्रांस के कप्तान एम्बापे को रोकना, पर हकीमी की आदत है राइट विंग से आगे जाना। ऐसा करेगा तो एम्बापे के लिए अटैकिंग स्पेस

0: खुलेगा। मोरक्को का स्ट्राइकर इस्माइल साइबाही हैमस्ट्रिंग इंजरी को लेकर आउट है। इस टीम में गोलकीपर बुनू को भी देखना है क्योंकि वो रोकता है स्ट्राइकरों को। साथ में माजगावी, जियाज, उनाही, अलखनूस और रहीम रहीमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। मोरक्को से डरना होगा फ्रांस के मुर्गों को। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट और सेमीफाइनलिस्ट के बीच आमना सामना। फुटबॉल एनालिस्ट कहते हैं कि टाइट टैक्टिकल फर्स्ट हाफ होगा जैसे 2022 में हुआ था, लेकिन फ्रांस का एलीट स्क्वाड डेप्थ और क्लिनिकल काउंटर अटैकिंग पावर मोरक्को के लिए घातक हो सकता है। ऊपर से साइबाही नहीं है मोरक्को में, ऐसे में फ्रांस के चांसेस ज्यादा हैं। वर्ल्ड कप 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल फ्रांस वर्सेस मोरक्को आज लाइव एमबीसी टीवी पर, और कल 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, संडे सुबह एक बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, और मंडे मॉर्निंग 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। मतलब इस वीकेंड के बाद 4 सेमीफाइनलिस्ट सामने आएंगे और 4 वापस घर। कौन जाएगा कौन रहेगा इस पर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारा साथ देते रहिए RM2 पर, और भूलिएगा नहीं, विल बी गिविंग यू ऑल द डिटेल्स इन खेल खिलाड़ी प्रोग्राम एज वेल, जो MBC3 भोजपुरी चैनल पर चलेगा कल रात के 8 बजे, और हमारे सहयोगियों के साथ स्पेशल प्लाटो भी जरूर देखेगा मैच से पहले। हर तरह से वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एमबीसी टीवी, एमबीसी रेडियो आपकी सेवा में।
1: थैंक यू अरविंद, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं।
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

0: हेलो हेलो बोल के आजू बाजू डोल के आप किधर गए?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: देखो गाड़ी सीधा चलाने का, इधर उधर नहीं जाने का, अपने रोड पे रहने का, अपने साइड पे रहने का, ठीक है? अभी जो लोग घर पे हैं, लेडीज क्या कर रही हो? चाय वाय हो गया आपका? ब्रेकफास्ट तो करते नहीं हो, भागते रहते हो? सुनो दो मिनट बैठ जाओ, गेम खेल रहे हैं हम। अब देखो जो गाड़ी चला रहे हो उनको तो मुझे नहीं पता, वो गाड़ी पार्क करके मुझे जवाब देंगे, लेकिन आप घर पे हैं, आप कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। जी हाँ, एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक टिकट जो आप जीत सकते हैं, इनके कॉन्सर्ट का हिस्सा बन सकते हैं, जो हो रहा है 25 जुलाई आज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC पाए। अब सोचो ये बॉलीवुड का जो गोल्डन इरा कहलाता है, जो 90s के गाने हैं, वाह वाह वाह वाह वा, क्या बात है क्या बात है। अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हमारे साथ गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देखो आजकल मैं सो नहीं रहूं, आजकल मैं सच में मेरी नींद ना अभी ठीक से मुझे सोने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है मैं आपको भी इस गेम के बाद बताऊंगी, ठीक है? तो पहले आप मुझे ये बताओ, तो इसीलिए ना मेरे दिमाग में उठपटांग सवाल आते रहते हैं, और अगर आप भी थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग से सोचो तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि आँखों के भाई को क्या कहते हैं? आँखों के भाई को क्या कहते हैं? 549 and 1294। हाँ हाँ, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, जो मन में आए वो बोल दो।
1: मॉर्निंग बीट।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: अगर हो तो

0: भाई हाँ, हम ही हम हैं, आप ही आप हैं, लेकिन जीता कौन?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो भाई, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था और मुझे लगा कि लोग पूछेंगे कि वेदिता क्या हो गया बेटा, सुबह से आपका दिमाग लगता है ठीक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मैंने पूछा था आंखों के भाई को क्या बोलते हैं, आईब्रो। इट्स आईब्रो। और यहाँ पर कौन जीत रहा है, टिकट किसको मिल रहा है, मौका जाकर अभिजीत जी का कॉन्सर्ट देखने का। ये है सचिन फ्रॉम ट्रियोली। कंग्रेचुलेशन सचिन, आपने बिल्कुल सही बोला ब्रो, इट्स आई ब्रो। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपने एमबीसी के साथ खेला, आपको मिल रहा है वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। और यहाँ पर जो लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे को होने वाला है 25 जुलाई शाम 7:30 बजे SBICC पाई में। आप स्टेप करने वाले हो इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये ऐसी आवाजें थी 90s के जहां पर हम लोगों ने रोमांस को जिया है गीतों के जरिए। तो ये जो टाइमलेस मेलोडीज हैं आपकी शाम को एकदम खूबसूरत बनाएंगे। इट्स प्योर मैजिक माय डियर। एंड जो लोग टिकट खरीदना चाहते हैं, टिकट अवेलेबल हैं mochicket.mu पर, एनरेजो तायो पर। टिकट स्टार्ट होता है 850 रुपीज़ पर। अब इसको मिस मत करना, रिजर्वेशन के लिए प्लीज़ कॉल द हॉटलाइन, इट्स 4669999। और इसी के साथ चलिए हमारा जो मॉर्निंग बीट है इसमें हम अपने इस मस्ती को जारी रखते हैं।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हाँ तो मैं बता रही थी आप लोगों को ना कि आजकल मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ. मुझे तो लगा था कि मैं अभी एक क्या करूँ, मैं एक क्लॉक खरीद के ना पड़ोसन को दे दूँ, वो अपने पेड़ पे टांग दे. जी हाँ, आम का पेड़ है, उस पे टांग दे. और जितने में मुर्गे और मुर्गियाँ हैं वो अब क्लॉक को देखने के बाद ही कुकरू को करे. भाई सच कहती हूँ, रात के 1 बजे कौन कुकरू को करता है? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, आके देख लेना. वही मैं परेशान हो गई थी कि इन लोगों को क्या हुआ भाई, ये तो सुबह के 5 बजे कुकरू को करते हैं, अभी तो रात के 1 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी 12 बजे. 12 बजे में तो डर गई थी कि 12 बजे कौन कुकरू को करता है. मैंने कहा इन लोगों ने कहीं नशा वशा तो नहीं किया मुर्गियों ने, हाँ क्या हो गया इनको? फिर पता चला नहीं भाई, फ्रांस क्वालिफाइड हो गया ना वर्ल्ड कप में, तो फ्रांस वाले बड़ी हैप्पी है, तो यहाँ पर सारे जो मुर्गी मुर्गियाँ हैं बड़ी ऐश कर रहे हैं. कोई बात नहीं बेटा, आओगे तो प्लेट में ही.
3: You're listening to RM2, a radio musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, भाई हमें भगाने के लिए विकास आ गए स्टूडियो में. गुड मॉर्निंग विकास.
3: मैं ऐसे नहीं आता, मैं भगाने के लिए नहीं आता.
2: तुम्हारा
3: नहीं, तुम्हारा मन करे तो तुम रुक सकती हो. क्यों नहीं, 9 से 12 नहीं, 7 से 9 की और 9 से 12 रुकोगी?
2: क्यों नहीं, why not? क्यों नहीं?
3: जो इंसान खुद भागना चाहता हो उसको कौन रोके, बिना जूते चप्पल पहने भी भाग जाती है.
2: चलो जाने दो अभी. आज ना सुबह सुबह बड़ा मन कर रहा है चॉकलेट केक खाने का.
3: क्या बात कर रही हो,
2: तो रेसिपी दोगे या लेके
3: आओ? नहीं, मैं तुम्हें बनाकर अच्छे से एक बड़ा सा केक बना दूंगा पेपर पे, उस पे चॉकलेट तुम खुद लगा लेना.
2: मुझे पता था ये बोलेगा. कोई बात नहीं, हमारा तो पागलपन चलता रहेगा. विकास आ रहा है साथ देने के लिए अपने बेस्ट गीतों के साथ. आपसे मुलाकात करूंगी मैं अब मंडे सुबह.
3: बसंती
2: गई.

0: स्टूडियो में गीता आ गई है, इनसे समाचार सुनिए। नमस्कार गीता।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को हमारा नमस्कार। कुड्डो में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर पर 42 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा और 7 भवनों के निर्माण की योजना है। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क। परियोजना से 4,000 से ज्यादा कुशल रोजगार पैदा होने की संभावना है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसर के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुंच का अवसर होगा। विदेश मंत्री धनंजय रावल ने कहा कि AFCFTA में महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित व्यापार प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक पहल है। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास में ये एक ऐसा घाव है जो आज तक नहीं भरा है। 62 साल पहले 9 जुलाई 1964 को पोस्टलाफायत में एक साधारण प्रशिक्षण अभ्यास एक भयानक हादसे में बदल गया था, जिसमें समुद्र की ऊंची लहरों ने 7 युवा सैनिकों की जान ले ली थी। आज सुबह स्मारक स्थल पर आयोजित वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मॉरिशस ने पुष्टि की है कि कल मॉरिशस से रियूनियन टापू जाने वाली उड़ान MK238 में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग यात्री की विमान में चढ़ने के दौरान तबीयत अचानक खराब हो गई। विमान के क्रू सदस्यों ने तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान किया और हवाई अड्डे के डॉक्टर के विमान में पहुंचने तक हर संभव सहायता दी। जांच के बाद यात्री को विमान से उतारकर आगे के उपचार के लिए एयरपोर्ट मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद यात्री का निधन हो गया। मॉरिशस ने दिवंगत यात्री के परिवार, खासकर उनके साथ यात्रा कर रहे रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मॉरिशस ने अपने क्रू और हवाई अड्डे की चिकित्सा टीम को उनकी तत्काल कार्रवाई और पेशेवर सेवाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। और विदेश स्तर पर अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। इसके बाद आज टर्की, कुवैत, बहरीन और कतर में ईरानी हमले की चेतावनी देने वाले मिसाइल अलर्ट सायरन बजने लगे। और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके और परभणी जिलों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर भाग आए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Welcome to RM2.
4: Musty Mornings, Radio Musty.

ब्यूटीफुल म्यूजिक और ऐसी गानों के साथ हो गई शुरुआत आपसे मुलाकात 9:09 और तारीख भी 9 है इतने सारे 9 में तो एक नया हो जाता है लम्हा पैदा Right, ladies and gentlemen, welcome and it's all happening on RM2 best mix of music चलिए अपनी बात हम जरूर जारी रखेंगे

0: your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसे आज की राशियों के बारे में जान लेते हैं, शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज एनर्जी फुल ऑन रहने वाली है, बस डायरेक्शन सही चुनना होगा। ऑफिस हो या बिजनेस, उसमें एक नया मौका सरप्राइज दे सकता है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी ऑनेस्टी और पेशेंस, ये मैजिक का काम करेगी। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, हाइड्रेशन जरूरी। और आज का मंत्र, जोश को अपनी ताकत बनाओ और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते जाओ।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम दिल को सुकून देगा। काम में कंसिस्टेंसी ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी। फिजूल खर्चा भाई से थोड़ा बचकर रहें, चलना बेहतर होगा। और आज का मंत्र, हर छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल के और करीब ले जाता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: मिथुन की बात करी, मिथुन राशि कम्युनिकेशन ही आज आपकी सुपर पावर बनने वाली है। पुराने कॉन्टैक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दिल की बात कहने का परफेक्ट टाइम है, बस ओवरथिंकिंग को साइड में रखिए और एक्शन को जारी रखिए। आज का मंत्र, सोच काम एक्शन ज्यादा।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: इमोशन स्ट्रॉन्ग रहेंगे लेकिन डिसीजन प्रैक्टिकल रखिए। फैमिली सपोर्ट आज कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। करियर में पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने ही वाला है, बस थोड़ा और इंतजार। शाम का वक्त रिलैक्सेशन के नाम कीजिए। आज का मंत्र, दिल से सोचिए, दिमाग से फैसला लीजिए।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो, बस स्पॉटलाइट सिर्फ आपके नाम हो सकती है। लीडरशिप दिखाइए, लोग आपकी बात मानेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगी। स्माइल के साथ हर चैलेंज को वेलकम कीजिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट, अपनी रोशनी को कभी कम मत होने दीजिए।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: भाई, जो डिटेलिंग है ना, ये आज आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। काम का प्रेशर होगा पर रिजल्ट जबरदस्त मिलेगा। हेल्थ रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। एक पुराना दोस्त अचानक कॉन्टैक्ट में आ सकता है। आज का मंत्र, परफेक्शन से पहले प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखिए।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: बैलेंस ही आज आपका कीवर्ड है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को प्यार से सॉल्व कीजिए। वही क्रिएटिव आइडियाज अप्रिसिएशन दिलाएंगे लेकिन थोड़ी सी और क्रिएटिविटी उनको प्रेजेंट करने में। शॉपिंग का मूड बन सकता है, बजट को याद रखिए। और आज का मंत्र, हर सिचुएशन में बैलेंस बना के रखिए, वही आपकी असली स्ट्रेंथ बनेगा।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: भाई, आज इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट गाइड बनेगा। करियर में बोल्ड डिसीजंस फ्यूचर बदल सकते हैं। सीक्रेट प्लान्स को फिलहाल सीक्रेट ही रहने दीजिए। फिटनेस पर फोकस पॉजिटिव एनर्जी देगा। आज का मंत्र, अपने इरादों

0: पर यकीन रखिए जीत आपकी तरफ बढ़ सकती है।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: एडवेंचर और लर्निंग दोनों आज साथ साथ चलने वाले हैं। ट्रैवल या प्लानिंग से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बस वर्ड्स केयरफुली चूज कीजिए। नए स्किल्स फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट। आज का मंत्र, नया दिन एक नई सीख और नई जीत लेकर आता है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: हार्ड वर्क का रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी, बस सीनियर की एडवाइस को लाइटली मत लीजिए। फैमिली के साथ वक्त बिताना यानी कि स्ट्रेस को कम करना आज का मंत्र। मेहनत का इंजन फुल स्पीड पर रखिए, सक्सेस दूर नहीं।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: भाई आज आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज सबको इम्प्रेस करेंगे। नेटवर्किंग फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगी। दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बना के रखना आपके लिए बिल्कुल बढ़िया। एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट दिन बना देगा। आज का मंत्र, अलग सोचिए, बड़ा सोचिए और अपने सपनों को उड़ान लेने दीजिए।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है पाइसेस। क्रिएटिविटी आज पीक पर रहने वाली है। दिल की आवाज सुनिए लेकिन प्रैक्टिकल सोच भी जरूर रखिए। फाइनेंशियल मैटर्स में स्मार्ट डिसीजन लेना जरूरी। शाम तक कोई खुशखबरी मूड को फ्रेश कर सकती है। आज का मंत्र, पॉजिटिव सोचिए, खुलकर मुस्कुराइए और हर पल को अपना बनाइए।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए जिंदगी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो ग्रे मैटर है ना, जिसको हम अपना दिमाग कहते हैं, वही हर मिनट बिजी रहना प्रोडक्टिविटी की निशानी नहीं होती। कई लोग होते हैं जो बहुत भागा दौड़ी करते हैं, इधर से उधर लगे हुए हैं, लेकिन अगर सिंपल वर्किंग टेक्निक्स अपनाएंगे तो ये जान जाएं कि बहुत सारे काम आसानी से हो सकते हैं। बस उनको सही जगह डालना है, सही क्रम में डालना है। उसके बाद देखिए साहब, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5-10 मिनट बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ शांत बैठने से ब्रेन इन्फॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस करता है। कई लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में लेते हैं, ये भी करना, वो भी करना, कैसे होगा, इतना सब सोच लेते हैं, उसके बाद दिमाग की जो फंक्शनिंग है, जो नेटवर्किंग है, वो इधर से उधर हो जाती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसी वक्त नए आइडियाज़ और क्रिएटिव सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा आते हैं जब आप आराम से बैठकर एक एक चीज़ को निपटाते हैं। एक वर्क फ्लो बना लीजिए कि ठीक है, मुझे ये काम करना है, लेट मी पुट द पॉइंट्स टुगेदर। फिर आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी अटेंशन नहीं मांग रही, कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है, तो बस उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो अभी करनी है। उसके बाद देखिए सब ठीक है। हर ब्रेक टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी वही बेस्ट आइडियाज़ का सोर्स बन जाते हैं। ये सोचकर लगे रहो मेरे बंधु।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

Right, this is a special day for sure. ये है शेमा के लिए. शेमा, very very happy birthday to you. बहुत सारी शुभकामनाएं सूरज की तरफ से. सूरज की रोशनी आप पर यूं ही पड़ती रहे और आपसे यूं ही हर परिस्थिति हारती रहे, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार. Enjoy yourself and make it special. पूरी RM2 की टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे शेमा.

कैच कर लो फ्रीक्वेंसी आरएम 2 पर मस्ट मॉर्निंग शो लीज इन एंडमेंट थोड़ी देर में चलने वाले 10 बजे के समाचारों की और उसके बाद फिर से मुलाकात होगी इट्स गोना बी फ्रॉम 10 टू 12 मूड मैजिक फुल ऑन टेंशन गॉन

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: स्वागत आप सभी का थर्सडे का दिन 9th of July. Time check exactly 10 AM. थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार. दस बज चुके हैं. स्टूडियो में आए गीता जी, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार
6: सभी को, हमारा नमस्कार. कल शाम को दो में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति

साथी में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये टेक्नोपार्क 54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 42 मिलियन यूरो के निवेश का प्रावधान है। कुल 7 भवन बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 पहले से ही संचालन में आ चुके हैं। आवा टेक्नोपार्क उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। इस परियोजना में 4,000 से ज्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री के अनुसार युवा मॉरिशस वासियों को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर प्रयोगशालाओं, स्मार्ट उत्पादन इकाइयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर मिलने चाहिए। आवा टेक्नोपार्क में विशेष रूप से बैलून कैथेटर्स के निर्माण किया जाता है। ये छोटे चिकित्सा उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डॉक्टर विशेष उपचार प्रक्रियाओं के दौरान करते हैं। 11 जून 2026 को शासे डोविलाओ मिडलैंड्स में जोनाथन रिशाओ का शून कुयाम 2 का शव मिला था। पुलिस जनता से अपील कर रही है। सीसीआईडी की मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है और जांच को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 5,00,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। आम जनता सेंट्रल सीआईडी से 2080868 या 5499877 पर संपर्क कर सकती हैं। और विदेश खबरों में दिल्ली में आज सुबह लगातार भारी बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा आज और 11 जुलाई के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। काली माता मंदिर रोड लाल माटी में 63 साल के 62 ईयर ओल्ड की श्री विश्वजीत मिटू, जो टैक्सी चालक थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह बाद के 3 बजे उनकी पत्नी उमा मिटू के घर काली माता मंदिर रोड लाल माटी से उठाकर बनाकई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। पोंकुलविल नोवेल फ्रांस में 74 साल की 74 ईयर ओल्ड की श्रीमती बबीता गोकुल, जो सुरेखा से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे कविराज गौर के घर पोंकुलविल नोवेल फ्रांस से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। बोपलों रोड कालबास में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड के श्री नवीन चंद्र जीवन, जो नवीन से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी ललिता जीवन के घर बोपलों रोड कालबास से उठाकर थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सैनाम रोड सुरीनाम में 71 साल के 71 ईयर ओल्ड के श्री जयराम गोविंद, जो राम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी बेटी समीला बाई गोविंद के घर सैनाम रोड सुरीनाम से उठाकर घोंपवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड खान पेंटोपीमा में 76 साल के 76 ईयर ओल्ड के श्री अजय किस्तू, जो सीताराम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके घर रॉयल रोड खान पेंटोपीमा से उठाकर पेंटोबिश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। बेलवेडियर रोड ब्रिजेवियाजिया में 87 साल की 87 ईयर ओल्ड की श्रीमती भगवानी ईश्वरी कालीचरण, पैदाइश नाम ननकू और जो मागाजिन से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे सूरज कालीचरण के घर बेलवेडियर रोड ब्रिजेवियाजिया से उठाकर लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। सुभाष रोड पुथोदो हमलेट में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सन्यासी, पैदाइश नाम दुर्गम्मा और जो ज्योति से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है।

0: अर्थी आज सपहर बाद के 3 बजे उनके बेटे नितिन सन्यासी विष्णु के घर सुभाष रोड पुथोदो हमलेट से उठाकर पीटू का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: to Radio Musti. Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: चले फैशन की दुनिया की तरफ. एंड अगर बात करें हम बॉलीवुड की, क्योंकि भाई हम बात करते हैं जो RM2 की, मतलब फुल ऑन बॉलीवुड. दोस्तों दो स्टेट्स यानी कि टू स्टेट्स ने हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल फैशन लेसन दिया. वो बता ना आपको मूवी टू स्टेट्स, हाँ, इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का फ्यूजन. वैसे ये जो फ्यूजन है ना, ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता. अगर सोचिए सच माने कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कमाल है. लेडीज एक क्लासिक वाइट शर्ट को प्रिंटेड एथनिक स्कर्ट के साथ या जीन्स पर चिकनकारी कुर्ती के साथ पेयर करके इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकती हैं. वही पर स्टाइलिश भी लगेगा और सुपर वर्सटाइल भी. और ऊपर से एक आपने अगर मफलर डाल लिया या फिर एक छोटी जैकेट कलरफुल, तो काफ़ी कमाल. जेंटलमैन के लिए सॉलिड कुर्ते पर एक जैकेट मोदी स्टाइल या फिर लिनन ब्लेजर पहनकर एक स्मार्ट फ्यूजन लुक पा सकते हैं. ये स्टाइल फेस्टिव इवेंट से लेकर कैजुअल फैमिली गैदरिंग्स सब तक कमाल की हिट जोड़ी साबित होती है. भाई फैशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आउटफिट सिंपल हो और हैंडक्राफ्टेड एक्सेसरीज हो, जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या कोलाफ्री चप्पल्स या टेक्सचर्ड हैंडबैग, लुक को वो इंस्टेंटली एक प्रीमियम फील दे देती हैं. सो फैशन मंत्रा, भाई फैशन तब सबसे खास लगता है जब ट्रेडिशन और ट्रेंड दोनों का परफेक्ट मेल हो.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: अरे अरे चली कहाँ निकल गई पतली गली।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: Right, वैसे आज के जमाने में जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ है, कोई अगर कहे कि यार I'm feeling bored, कुछ करने को नहीं, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं, इसलिए क्योंकि आज आपको बताया कि कितने सारे स्किल्स, कितनी सारी नई चीज़ें, एक अलग दुनिया खुल जाती है जब आप इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो क्या कहना है, बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, नहीं बेड में लेटे लेटे मूलतों के नीचे आराम से गर्म गर्म और नाइस लगता है कि वहाँ से निकलना पाप होगा। नहीं नहीं नहीं, अपने आप नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी कोशिश आप कर सकते हैं, एक अलग चीज़ करने की कोशिश, हर दिन छोटी सी चीज़ अलग कीजिए। मीटिंग में अपने आइडियाज़ रखिए, जो भी तक आपने दिल में रखें,

0: वहीं पर हो सकता है कोई आइडिया शेयर करने के साथ साथ आपका व्यू पॉइंट कहीं पर काम आ जाए। किसी नए इंसान से बात कीजिए, स्माइल कीजिए इतनी टेंशन में भी, जरूरी एक नई शुरुआत। वैसे नए स्किल सीखने की शुरुआत कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सही, लेकिन कुछ नया। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है और कॉन्फिडेंस भी वहीं से बनता है। तो बस ये सोच लीजिए कि एक रोज एक छोटा स्टेप आपको लेके जाएगा एक नई मंजिल की तरफ।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Ladies and gentlemen, स्वागत आप सभी का. It's 43 past 10 in the morning. A very good morning. 9th of July, Thursday का दिन और हफ्ता जहां पर अपनी चाल चल रहा है वहीं पर Thursday के दिन पर आ गए. कई लोग कह रहे हैं इतनी ठंड क्यों हो रही है, सुबह उठना कितना मुश्किल हो गया. लेकिन सुबह उठकर भागा दौड़ी करते हुए यहां पर एक बड़ी सी टीम आ गई है. बहुत सारे लोग हैं, उनको हेलो कहते हैं. नमस्ते. और जो नमस्ते कहते हैं ना हंसते हंसते, उसकी बात कुछ अलग ही होती है. सो लाफ लोगा से आ गए हैं और अपने साथ थोड़ी ठंड लेकर आ गए यहाँ पर. लेकिन लेट मी टेल यू कि ये वो लोग हैं जिनके लिए हम गाने चलाते हैं और वो आज हमारे सामने हैं. इससे बढ़िया और क्या बात. और यहाँ पर वो गाना गा रहे हैं और मज़े आ रहे हैं. तो दादी हमारे साथ बैठी है, पता नहीं वो बात करना चाहेगी कि नहीं. दादी नमस्ते.
3: नमस्ते.
2: नमस्ते. अरे वाह क्या बात है. वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, रेडियो कैसे चलता है जानना चाहते हैं. सो एमबीसी रेडियो में आप सभी का स्वागत है और हम भी चाहें कि आप जब गानों को एंजॉय करते हैं तो हमें जरूर बताएं. अभी के लिए पुराने गानों की तरफ हम जरूर चलते हैं. डोंट फॉरगेट 12 से 2 के बीच में कुछ पुराने गाने, रेट्रो रिदम जरूर चलता है. अगर आपको पसंद है तो डोंट फॉरगेट, ऐसे ही चलते चलते हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं. ब्यूटीफुल सॉन्ग टू ऑल द वंस जो अभी रोड पर हैं, घूमते फिरते इन गानों को सुनकर अपनी मेमोरी कार्ड में कुछ यादों को ढूंढ रहे हैं. कभी कभी मेरे दिल में भी ख्याल आता है.
4: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

कभी कभी होता है ना कि आपको एक हमसफर मिल जाता है, उसके बाद जिंदगी में चलती जाती है, लेकिन सफर खाना होने के बाद भी लगता है कि क्यों ना कुछ लम्हे और साथ गुजार पाएं, और फिर लगता है कि ये पल यूं ही रुक जाएं, यूं ही थम जाएं, और हम यूं ही हाथों में हाथ कदमों से कदम मिलाकर चलते जाएं। Music on, RM2, ladies and gentlemen. Beautiful moments, music or melodies.

0: चलिए सही आ रहा है गाना और ये लेके जा रहा हूँ मैं सीधा 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। लेडीज एंड जेंटलमैन 11 बज चुके हैं, थर्सडे 9th of July, वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट संक्षिप्त समाचार गीता जी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। कुड्डो में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर पर फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा और 7 भवनों का निर्माण। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क और इस परियोजना से 4,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुँच का अवसर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी चीनी बिजनेसमैन लिहाय अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगे शुरुआती आरोपों को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। वे कल पोर्ट लुइस की जिला अदालत में पेश हुए। लिहाय को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था जब 2014 में हांगकांग में उनके पर्सनल अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। उनके वकील मनी लॉन्ड्रिंग के शुरुआती आरोप की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। और विदेशी स्तर पर पाकिस्तान के एक बोइंग कार्गो विमान का मलबा मिल गया है। 27 साल पुराना ये विमान मंगलवार को शारजा से कराची आने के दौरान अरब सागर के ऊपर रडार से गायब हो गया था। विमान में सवार 5 सदस्य चालक दल की तलाश की जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। काली माता मंदिर रोड लाल माटी में 63 साल के 63-year-old के श्री विश्वजीत मिटू, जो टैक्सी चालक थे और चांद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी उमा मिटू के घर काली माता मंदिर रोड लाल माटी से उठाकर बुनाकर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। पोंकुलविल नोवेल फ्रांस में 74 साल की 74-year-old की श्रीमती बबीता गोकुल, जो सुरेखा से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे कविराज गौर के घर पोंकुलविल नोवेल फ्रांस से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 4 PM। इंग्लैंड में 76 साल के 76-year-old के श्री अनिरुद्ध कुमार चमरू, जो जोहो से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार कल दिन के 1:30 बजे इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: अरे कोई भी वक्त हो चाहे पौने ग्यारह साथ रहेगा हमेशा हमारा.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए गुड मैसेजेस और लाइफस्टाइल मंत्र वैसे जीना जी गुड मॉर्निंग आपको जी और कहते हैं हैप्पी हैप्पी डे आप सभी को जितने भी लोग काम कर रहे हैं बस आशीर्वाद रहे और जिंदगी में प्यार हो पीस हो जॉय हो तो फिर लगता है कि सब कुछ कितना ब्यूटीफुल हो गया ना हैव अ वंडरफुल ब्लेस्ड डे अहेड आपको भी थैंक यू वहीं पर आशा जी आगे उन्होंने कहा कि सुपर्ब सिलेक्शन वैसे थैंक यू जरूर है फ्रॉम द टीम और कहते हैं कि कॉटेज में ना वेदर थोड़ा सा विंडी विंडी है लेकिन कल से बेहतर है जितनी बारिश हुई टिप टिप टिप बरसा पानी ऐसी चल रही थी सबकी कहानी कुछ चेंज हुआ नहीं बहुत सारा पानी नहीं कपड़े सूखे नहीं ऐसा लगता है कि हाय थोड़ी सी गर्मी आ जाए क्या करें वहीं पर उषा चाची गुड मॉर्निंग आपको भी ज्योति जी शाम तो बनारस से हमारे साथ दे रही हैं और कहते हैं कि रात को नींद कभी नहीं आए तो सुबह उठने का मन नहीं करता बाय गॉड हाँ ये तो है वैसे जिंदगी में बहुत कमाल की बात है कि आप अपनी थोड़ी सी प्लानिंग जरूर कर लें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बस आपको चाहिए कि कुछ अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आए आए लेकिन साथ में एक सुपर पावर यानी कि हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं समझने के लिए नहीं अगर आपने ये सोच लिया कि आप जो भी कहते हैं ठीक है लेकिन अगर कोई कह रहा है तो ध्यान से सुने ये क्योंकि एक स्किल है सुनना भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं रिलेशनशिप्स नॉर्मली नेचुरली स्ट्रांग हो जाती हैं चाहे घर हो या वर्क प्लेस तो बस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ऑब्जॉर्व करें ज्यादा सुने हर कॉन्वर्सेशन कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: काफ़ी लोगों का सिटिंग जॉब होता है और नॉर्मल सी बात है कि अपने कंप्यूटर के सामने फोकस करके बैठे हुए हैं, लेकिन कभी कभी आपकी जो सीट है ना वो भी आपकी शेप ले लेती है। इतने टाइम से आप बस बैठे हुए हैं और रियलाइजिंग कि ये कितना डैमेज कर सकता है। एक बार एक फ़ोटो दिखाई दी जिसमें फास्ट फूड और जाने क्या क्या उसमें रखा हुआ था एक चेयर पे। हाँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें से ना सबसे जो ख़राब चीज़ है वो है ये चीज़ों को नोटिस करते, लेकिन किसी ने चेयर नहीं कहा। एक्चुअली चेयर ज़रूर आराम देती है, लेकिन इस पर बैठे रहें, हाँ, डेस्क जॉब करते हैं तो हर 30-45 मिनट में आप 2 मिनट के लिए उठकर चलना या स्ट्रेच करना ना भूलें। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, बॉडी स्टिफनेस कम होगी और फोकस को रीसेट करता है यस छोटा सा ये काम। दिन भर की छोटी छोटी मूवमेंट्स मिलकर हेल्थ पर बड़ा असर डालती हैं। बस आज का मंत्र यही, अगर आप याद रखें कि हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे आप बैठते हैं काम करते हैं एक नॉन स्टॉप, तो फिर आपको बीच में निकलकर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा घूमना है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा सा वॉक करके बेहतर फील करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे और पूरे दिन की एनर्जी आप बढ़ा सकते हैं।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: 92
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलो म्यूजिक कंटिन्यूज और यहाँ पर एक ग्रुप आया था लाफ लोगा से, इतने सारे लोग आए थे. इट्स ऑलवेज नाइस कि आप यहाँ पर आकर समझते हैं कि ये रेडियो पे बटन दबा के गाना चल जाता है. हम भी घर में क्यों ना ऐसा इंतजाम कर लें. आपको बटन दबाना है लेकिन रेडियो का, उसको ऑन कीजिए. आजकल तो MBC प्ले के बारे में आप सुन ही रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप कनेक्टेड रह सकते हैं, MBC रेडियो हो या फिर TV.
0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement. La MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: Sondero.

Well, ladies and gentlemen, music continues. और याद रखिए कि अभी थोड़ी देर में रेट्रो रिदम, जहां पर पुराने गाने, एवरग्रीन सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल म्यूजिक, साथ जुड़े रहिए. It's all gonna be fun. It's always 24/7 आपके साथ.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक 12 बजे हैं. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे गीता. नमस्कार आपको.
5: नमस्कार नीतू शाह, सभी को हमारा नमस्कार. आवा टेक्नोपार्क के रूप में देश के पहले टेक्नोलॉजी पार्क का कोटिडो में उद्घाटन किया गया है. आवा टेक्नोपार्क एंडोवास्कुलर मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण के लिए समर्पित हैं. अब तक इस परियोजना में 1 बिलियन रुपए से ज़्यादा का निवेश किया जा चुका है और 200 रोजगार पैदा किए गए हैं. कल शाम हुए इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, उनकी पत्नी वीना राम गुलाम और फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंतों सहित कई महानुभाव उपस्थित थे. इस परियोजना के माध्यम से मॉरिशस को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री ने भविष्य के इस उभरते क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी प्रकाश डाला है. शी ट्रेड मॉरिशस हब पहल के तहत कल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर अफ्रीकी बाजारों में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए

0: एफटीए के मौकों को खोलना विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन दो दिनों के दौरान ठेकेदार, व्यापार विशेषज्ञ और नीति बनाने वाले अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया से मिलने वाले मौकों पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा समझौता है जो 54 अफ्रीकी देशों को एक साथ लाता है और इसका मकसद 1.4 बिलियन से ज़्यादा उपभोक्ताओं वाला एक एकीकृत बाजार बनाना है। 11 जून 2026 को शासे डो विला मिडलैंड्स में जोनाथन रिशा का शुनकु याम टू का शव मिलने के बाद पुलिस जनता से अपील कर रही है। सीसीआईडी की मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी रखी हुई है। जांच को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 5,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और विदेश खबरों में भारत की दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह बार भूस्खलन और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सूरत में बाढ़ से 13 लोगों की मौत हुई है, हजारों विस्थापित हुए हैं। दिल्ली में इमारत के ढहने से 4 और केरल में 5 लोग मारे गए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: भाई ऐसे कैसे बिना प्यार बांटे खुशियां बांटे दिन भी जाए रात भी जाए। हाँ आप हो तभी तो प्यार इतना बरस रहा है। सो लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स। दिन के 12:09 हुए हैं, स्वीकार करें नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम एंड व्हेयरएवर यू माइट बी। ये दो घंटों का सफर इतना सुरीला होता है, इतना पसंदीदा होता है कि आप इंतजार करते हो कि कब ये घड़ी आए और इन प्यारे प्यारे एवरग्रीन सरबहार गीतों का मजा लेते चले। सो व्हेयरएवर यू माइट Stay well tuned. दो घंटों का सुरीला सफर है रेट्रो रिदम। जी हाँ, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, नॉस्टैल्जिया लेन को हम यहाँ पर यादों से भरने के लिए एकदम सज एकदम तैयार हैं। सो व्हाटएवर यू माइट बी, आपको तो पता ही है नंबर वही है 5499 1294 पर आपके मैसेजेस आपके पैगामों का इंतजार।

इसीलिए तो यही कहते हैं जितना हो सके मुस्कुराते रहे, इसमें टैक्स कुछ नहीं लगता है। जितना आप मुस्कुराओगे, जितना आप प्यार करोगे, जितना प्यार बांटोगे, उससे भी ज़्यादा प्यार आपको मिलेंगे।

थैंक यू सो मच। दैट वॉज एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। आपको भी कोई गाना पसंद हो देन नीतू आपके साथ टिल 2 PM 5499-1294 पर। अरे बाबा यहाँ पर तो बारिश, गीतों की बारिश। हाँ जी, कहीं धूप कहीं तेज हवाएं बह रही हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रही है तो। एंड ऑफ कोर्स 12:17 लंच टाइम, सबको शुभ आहार, बोन अपेटी। एक साथ गाएं।

0: चोरी चोरी यस चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार हो ही जाता है. व्हाट अ लवली गाना. ऑफ कोर्स कुमार सानू की आवाज में टेकिंग यू टू द 90s
1: रेट्रो रिदम.
0: बस आपका साथ मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए. 12:23 हो रही है. कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स टेकिंग यू टू द 60s, कभी 70s, 80s एंड कुछ 90s भी. एंड इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन? ज्योति एज यूजुअल, शातु बिनागस किरानी है ये, और आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार. एंड हमारे लिए थैंक यू सो मच. कुछ रिक्वेस्ट तो ऐसे आ रही है, वाह गाने सुनकर हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो और भी मजा आएगा. वेरी गुड आफ्टरनून याले शाम ऑफ सुरीनाम. आपने एक ऐसा पिक्चर मैसेज भेजा है, रोटी साथ में सैलड है, ब्लेडीज फिंगर, मुँह में पानी भराया है दोस्त. सो बोन अफीची टू यू. नेक्स्ट गाना स्पेशली गुजार टू यू नवनीत, भारती एंड रुद्रानी. ये गाना आपकी तरफ से है गिरीश, और वो कहती है ये दोस्ती हम नहीं कभी ना तोड़ेंगे ना ही छोड़ेंगे. एंड स्पेशली गुजार टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स.

RM2 Radio Masti.

पक्का वादा, हम तो ना तोड़ेंगे भाई, आप ही ना तोड़िएगा और बस मैसेजेस भेजते रहिए. दैट्स फॉर शो ऑन 5499 1294. 12:28 हो रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. गाने सुनकर बस इस सर्दी को आप भूले जा रहे हो, क्योंकि ये जो गाने हैं आपको एकदम वार्म रखे जा रहे हैं. थैंक यू. नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं, स्पेशली आपके लिए विदुषी माय डियर फ्रेंड. आप इस वक्त किचन में हैं एंड लंच की तैयारी कर रहे हो. वैसे क्या बना रहे हो शाम के लिए, क्या कुछ बना रहे हो, तैयारियाँ कर रहे हो? बॉ खुहाश एंड कहती है फ्रॉम होजिल मेरे पूरे परिवार के नाम, और जिंदगी के सफर को आप एंजॉय करना चाहती हैं तो रफी साहब का ये वाला गाना आपके नाम फ्रॉम द मूवी नर्तकी.

0: बिल्कुल अकेले नहीं है और कभी कभी कोई अपना साथ होकर भी पास होकर भी दूर रहता है। कभी कभी किसी की याद भी आपको सता देती है और भले ही आंखों से दूर लेकिन हमेशा दिल के करीब है ना।
1: रेट्रो रिदम।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच इन प्यारी प्यारी गीतों को यानी कि एंजॉय करने के लिए फरमाइश करते हैं, बस हमको भी अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट गीत की ओर बढ़ते हैं, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन वंस अगेन इन द ईयर। कहां पर ले चलते हैं आपको, 1958 यहूदी। इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना ये मेरा दीवाना शैलेंद्र साहब को मिला था फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट इस गीत के लिए। लेकिन इस फिल्म का एक और खूबसूरत गाना है लता जी और यहाँ पर शायद गीता दत्त इस गीत को गा रही हैं, बेचैन दिल खोई सी नज़र, ये गाना आपके नाम चलाती हैं लक्ष्मी जी, गीतांजलि, शिवानी, हेशा, लिंता, त्रियोले से सब परिवार के नाम।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वक्त तो इतना जल्दी जल्दी बीत रहा है, 12:00 ऑलरेडी 38 मिनट, और यहाँ पर गाने की फरमाइश भी धन आ रही है ऑन 5499-1294। बेगम मोहरान, आप रहती हैं कौजे मास्क पावे, आपके हबी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप कहती हैं छोटी सी मेरी दुनिया है लेकिन बहुत प्यारी दुनिया है और इसमें बस प्यार ही प्यार है, तो आप इस प्यार को एंजॉय कीजिएगा। और ये है एक लड़का एक लड़की, फिल्म से लिया गया।

बस अपनी इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया को संजो कर रखे और बुरी नजर वाले जो भी होते हैं वो दूर रहे आपकी दुनिया से, और इस दुनिया में हमको भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, थोड़ा सा शामिल होने का मौका भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लवली सॉन्ग्स ऑन द वेट्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम जना स्विजरन परिवार, आपकी लिस्ट तो इतनी लंबी है सो आपके पूरे परिवार के नाम दिस वन।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: विश्वानी दुमान फर्म बकवा आपकी बहन इंदिरा शारदा सहेलिया नीला प्रतिभा शोभा गीता गजादर एंड योर वांस आरती फिल्म का कोई भी गाना आपने बोला मास्ट प्लीज चला दो ये वाला अच्छा है लता जी और रफी साहब की आवाजें आपके नाम अब्दुल अंसारा बानू पद्मिनी है आप कैसे कह सकती हैं कि आप अकेली हैं हम हैं ना आपके साथ

0: काजल।
1: आपको लगता है तकदीर ऐसे ही सवर जाती है? बिल्कुल नहीं, मेहनत करोगे तभी तो तकदीर सवरेगी।
2: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आप ये धुन सुनो, ये इंस्ट्रूमेंट सुनो, दफली घुंगरू। 12:54 भागो नीतु भागो, यानी कि 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आई मीन नीतु, जल्दी जल्दी करो। चलिए जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर बाबू अनथवा कैथोबोन से पूरे परिवार के नाम। ग्रेट फैन ऑफ राज कपूर साहब, तो आशिक फिल्म का ये गाना गुजार टू ऑल हिज फैंस, और आपको ले चले हैं डान मेमोरी लेन। साथ निभाते रहेंगे टिल 2 PM।

0: सुद्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतुषा श्रोताओं को भी नमस्कार कुद्दो में आवा टेक्नोपार्क कार्यरत हो गया है प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल शाम इसका औपचारिक उद्घाटन किया हाई प्रेसिजन मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले इस टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण में 42 मिलियन यूरो निवेश किए गए हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर इससे 4000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना बजट 2026-2027 की रणनीतिक दिशाओं के अनुरूप नए और उभरते सेक्टरों के विकास के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल ऊर्जा। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को अफ्रीकी मंडी में उपलब्ध संभावनाओं से फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की मिलीजुली पहल पर आयोजित कार्यशाला के अंतर्गत इस मुद्दे पर विचार किया गया। शीर्षक रहा अनलॉकिंग AFCFTA अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन लेड बिजनेस इन अफ्रीकन मार्केट्स। 2 दिनों के अंतर्गत प्रतिभागियों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के बाजारों में मौजूद मौकों के बारे में बेहतर समझने का अवसर मिला।

0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के 90 ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार दूसरी रात के लिए हमले किए गए हैं। ईरान ने पुष्टि की कि उसके दक्षिणी तट पर धमाके किए गए और गल्फ इलाके में उसके द्वीपों पर भी हमले हुए हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दिनों में 14 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कॉन्सिपियों पॉइंट ऑफ पीमा में बावन साल की 52 इयर्स ओल्ड श्रीमती उमा भूला पैदाशी नाम जरी, जो ललिता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे इनके मकान कॉन्सिपियों पैतृपीमाओं से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थैयोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM। पायोंके रोड मोंसेलमान सेंट अंतोन गुडलेंस में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जगवंती राजकुमार पिताशी नाम जोधुआ, जो इंद्रानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी शनिवार 11 जुलाई को दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री विमल राजकुमार के मकान पायोंके रोड मोंसेलमान सेंट अंतोन गुडलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 11th of July। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Radio.TV. La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement. La MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: इस एक पूरे 5 मिनट के गीत में पूरी जिंदगी कहानी बीत जाती है। जिंदगी एक फसाना अल्फाज भी है और जिंदगी में खुशियां गम भी है। जब कभी कभी हम उठते हैं ना, कहते हैं कि उठ जाते हैं, और जिंदगी की मार जब पड़ जाती है तो एक ही बारी हम नीचे उतर जाते हैं, तब जिंदगी की अहमियत को हम समझ पाते हैं। दैट्स व्हाई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। इसको आप ऐसे जियो कि आखिरी दिन हो, हर पल जहां हो सके प्यार बांटते रहो, प्यार पाते रहो। थैंक यू सो मच।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: ये जहां हो या फिर वो जहां जहां आप रहेंगे वहां हम भी रहेंगे साथ साथ. थैंक यू सो मच 549-9294 पर आपके मैसेजेस के लिए और प्यार भरे नगमे ओनली फॉर यू. थैंक यू ललिता, आप ही हमारे हम सफर बन गई हैं.

0: जमाने के हर संगीतकार बी शंकर जयकिशन कल्याण जी आनंद जी बाय द वे दैट वाज कल्याण जी आनंद जी कंपोजिशंस फ्रॉम द मूवी जब जब फूल खिले
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती
0: तो हाँ क्या कह रहे थे उस जमाने के जो म्यूजिक कंपोजर्स हुआ करते थे उनके उनके गाने सुन के उनके कंपोजिशन सुन के पता चल जाता था ये तो ओनली ऑडी बर्मन है ये तो ओनली कल्याण जी आनंद जी 1:18 ये वाला है नदीम श्रवण कुमार सानू आलका याग्निक बैक टू द 90s मैंने ये दिल तुम नहीं मैं गाने वाली थी नहीं मैंने ये दिल तुमको दिया मुझे लगा ये कौन सी भाषा है नहीं तो चलिए ये गाना स्पेशली आपके लिए चाची उषा आमोगी से सब परिवार एंड मिस्टर डेव एंड वाइफ फ्रॉम फ्रांस कहते हैं आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्रांस टीम आपकी जीत होगी आपकी टीम की जीत होगी मिस्टर डेव अगेंस्ट मोरक्को ये तो समय ही बताएगा लेकिन आप हाँ अपनी टीम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा

0: सौ बात की तो एक बात है भाई, आगे जो पहले के गाने रहे बी द 90s या फिर गोल्डन एरा में जो मेलोडीज हुआ करती थी ना, वो तो अलग ही, और आज भी सुनकर कितना अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: एक और खूबसूरत दिल को छू लेने वाला नगमा पिक्चराइज्ड ऑन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यानी कि मौसमी चटर्जी एंड द शशि कपूर दास स्वयं पर फिल्म का सदाबहार गाना रफी साहब एंड लता जी की आवाज़ें।

हम को तिलका गाएंगे नीतू शान आप अपना नाम लो ना। डेढ़ बज रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये गाना आपके लिए यालेश एंड शाम फैमिली, साथ ही साथ सैंपिया से भाई रवीन, उनके पूरे परिवार के नाम।

24/7 मस्ती ही मस्ती होती है ऑन रेडियो मस्ती ऑफ कोर्स 1:40. थैंक यू सो मच. हे हेमा, कैसी है माय डियर फ्रेंड? ठीक ठाक. ये गाना आपके नाम, साथ में है रोशनी और ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम, सात समुंदर पार. एज यूजुअल प्रकाश वती आपका साथ मिल रहा है. लक्ष्मी जी, गीतांजलि, शिवानी, हेशना, लिंता, त्रियोले से आप इतनी लंबी लिस्ट भेजते हो, पूरे महीने की लिस्ट भेज देते हो. आपकी जो लिस्ट है उसमें से गाने चुनकर मैंने आपके लिए चला दिया है माय डियर. सो सबको हम मौका देते हैं और बस कल परसों वैसे ही आपके गाने तो चलेंगे. सो आप एंजॉय कीजिएगा 5499 1294 पर.

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: This one specially goes out to all those जिनकी शादी होने वाली है. शादी मुबारक.

0: रेट्रो रिदम।
1: Well, जान पहचान हो तो जीना आसान ही हो जाता है। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे लवली मैसेजेस आ रहे हैं ऑन 5499 1294। हे, मेरा नाम नीताशा बदल दिया, नीतू। कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमको याद किया, थैंक यू माधवी फ्रॉम सेफ हौसवा कालोजिन। वैसे उधर मौसम कैसा है? हाँ, सिलेक्शन अच्छी लग रही है आपको, थैंक यू। और आप सिलाई कर रहे हैं तो बस मस्त हो जाए और गानों के साथ झूमते रहे। एंड यहाँ पर नीतू, ट्रस्ट यू आर डूइंग वेल, यस थैंक यू सो मच। हम तो अभी चल रही है भाई, एक प्यारी सी गजल सुनना चाहते हैं, सुनते रहे। व्हाटएवर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो शायद आप सुन लें ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, सुनते रहे। हाँ, एंड पो बोजे से है एज यूजुअल रेखा, एंड आपके बेटे हैं अंश। थैंक यू सो मच माय डियर, आपने इतने प्यार से साथ निभाया। इट्स ऑलरेडी 1:55 एंड हमारे जाने का टाइम भी आ गया है। वो वॉयज आपको कहेंगे यहाँ पर सुदेवी जी फ्रॉम मोका, एंड हैव अ सेफ फ्लाइट, एंड जल्दी जल्दी वापस आ जाना है, आपको मिस करेंगे जरूर। मुलाकात होती है कल सुबह 7 से 9 के बीच इन मॉर्निंग बीट, जबकि बस थोड़ी देर में परी आ जाएंगी विद बॉम्बे टॉकीज़। टेक केयर, बाय बाय।

निकल चुके थे लेकिन फिर याद आया कि खाला छोटी ने हमको याद किया फ्रॉम पोलोजे एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको खाला छोटी 71 इयर्स की हो गई है भाई हरीश दादी पर भावती सभी तीन कोगी कौमाली परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं स्टे ब्लेस्ड

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 2 baje hain. देश विदेश की खबरें एक बार फिर आपसे अदिति नमस्कार आपको.
6: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार. कुद्दो में आवा टेक्नोपार्क कार्यरत हो गया है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल शाम इसका औपचारिक उद्घाटन किया. हाई प्रेसिजन मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली इस टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण में 42 मिलियन यूरो निवेश किए गए हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर इसे 4000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना बजट 2026-2027 की रणनीतिक दिशाओं के अनुरूप नए और उभरते सेक्टर विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल ऊर्जा. ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में प्रवाह रेखाओं को खतरा हो रहा है. मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बागुली ने अपना करियर इन नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके. उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा. इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राष्ट्रसंघ में समंदर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था. महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को अफ्रीकी मंडी में उपलब्ध संभावनाओं से फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की मिलीजुली पहल पर आयोजित इस कार्यशाला के अंतर्गत इस मुद्दे पर विचार किया गया. शीर्षक रहा अनलॉकिंग AFCFTA Opportunities for Women-led Business in African Markets. 2 दिनों के अंतर्गत प्रतिभागियों को African Continental Free Trade Area के बाजारों में मौजूद मौकों के बारे में बेहतर समझने का अवसर मिला. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के 90 ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार दूसरी रात के लिए हमले किए गए हैं. ईरान ने पुष्टि की है कि उसके दक्षिणी तट पर धमाके किए गए और गल्फ इलाके में उसके द्वीपों पर भी हमले हुए हैं. ईरानी अधिकारियों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. नंबर 10 एवेन्यू विल्सन मेलरोज में

0: बेलरोज में 92 साल के 92 years old की श्रीमती सरोजनी तिलक, श्रीमती सरोजनी तिलक पैदाशी नाम गोपाल जो जानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के 2:30 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे इनके बेटे श्री देवानंद तिलक के मकान नंबर 10 एवेन्यू विल्सन बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियानो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM। काली माता रोड लाल माटी में 66 साल के 66 years old श्री इंद्रदेव पुनाए, श्री इंद्रदेव पुनाए जो ईश्वर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विदुला पुनाए के मकान काली माता रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लाल माटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:06 और जैसे कि आप जानते हैं आफ्टरनून टाइम होता है डेडिकेटेड बी टाउन अपडेट्स के नाम, और साथ ही साथ आपके लिए कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आफ्टर द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो आपने सुने इन रेट्रो रिदम. अब टाइम है कि हम म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज करें और कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आप तक पहुँचाएं. सो लेकर आए हैं आपका अपना बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ 4 PM, एंड उम्मीद करते हैं इस थर्सडे आफ्टरनून को आप एंजॉय कर रहे हैं. थर्सडे तो हम कह सकते हैं इट्स फ्राइडे का जो एक दिन पहले का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, डे बिफोर सेलिब्रेशन, क्योंकि अब बस एक और दिन बचा है, उसके बाद तो वीकेंड आने ही वाला है. सो चलिए गुडी गुड विशेस के साथ वी हैव सम लेटेस्ट ट्रैक्स कर रहे हैं आपका इंतजार, कहीं मत जाइए. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर.
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स.
0: आज आजादी है. बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

जब वन में आग लगी है हमने आंखें सेकी है, जब जब वन में नची मोरनी आंखें भर के देखी है।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: And well friends, it's 2:47. आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा के लिए बॉक्स ऑफिस का मौसम बिगड़ता नजर आ रहा है. पहले वीकेंड में दमदार कलेक्शन के साथ थिएटर्स में एंट्री मारने वाली इस फिल्म के रिव्यू मिले जुले से थे और जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी फिल्म के पक्ष में मजबूत नहीं नजर आया. इसीलिए वीकेंड खत्म होते ही अल्फा सोमवार से ही बॉक्स ऑफिस पर डगमगाती नजर आई.

मंगलवार को सस्ते टिकट के ऑफर के बावजूद इसे कुछ सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं दिखी और साथ ही साथ अब छठे दिन भी अल्फा स्ट्रगल करती नजर आ रही है। आलिया भट्ट और शर्वरी स्टार अल्फा बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है। शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही इस फिल्म को वीकेंड में दर्शकों का साथ मिलता नजर आया था और इसलिए बॉक्स ऑफिस पर कुछ उम्मीद भी नजर आ रही थी। पहले ही वीकेंड अल्फा ने 34 करोड़ का नेट कलेक्शन करके एक उम्मीद दिखाई थी, मगर मंडे टेस्ट में फिल्म पास नहीं हो पाई और कलेक्शन करीब 60% तक गिर गया और मंगलवार को ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे ऑफर में टिकट्स के रेट सस्ते होने से भी अल्फा को कुछ ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आया। सोमवार को 3.85 करोड़ से उठकर मंगलवार का कलेक्शन रहा 4.25 करोड़, लेकिन बुधवार को फिर से टिकटों का नॉर्मल रेट्स होने से जो लोगों की जो भीड़ होने की उम्मीद थी उसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आई। सो अभी के लिए तो लग नहीं रहा है दैट ये फिल्म हिट की तरफ बढ़ती हो, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो उनके फैंस हैं, आलिया भट्ट के फैंस हैं, वो उन्हें अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जितनी उम्मीद थी इस फिल्म के साथ, शायद उन उम्मीदों पर ये फिल्म खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। सो अल्फा जो बहुत ही हाई बजट एक फिल्म है, तो इस बजट को कवर करना अभी के लिए तो लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंगलवार को मार्शमैलो निगलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है। एक ऐसी त्रासदी जो दम घुटने की स्थिति में तुरंत सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व पर जोर देती है। अधिकारीगण आगाह करते हैं कि मार्शमैलोज, गमी कैंडी, लॉलीपॉप आदि के साथ साथ लीची, अंगूर, लौंगान जैसे फलों को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए क्योंकि इनके निगलने से दम घुटने का खतरा ज्यादा रहता है। कद्दू में आवा टेक्नोपार्क कार्यरत हो गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल शाम इसका औपचारिक उद्घाटन किया। हाई प्रेसिजन मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली इस टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण में 42 मिलियन यूरो निवेश किए गए हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर इससे 4,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना बजट 2026-2027 की रणनीतिक दिशाओं के अनुरूप नए और उभरते सेक्टर विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल ऊर्जा आदि। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में प्रवाल रेखाओं को खतरा हो रहा है। मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बागुली ने अपना करियर इन नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके। उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राष्ट्रसंघ में समंदर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यॉर्कशायर और उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में एम्बर हीट हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। आज कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान है। यूके में एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार के लिए भीषण गर्मी की लहर की चेतावनी जारी की गई है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी सिक्स पीटो में 47 साल के 47 years old श्री विकास चुलन जो मुन्ना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी माँ श्रीमती स्वस्ति चुलन के मकान एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी सिक्स पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान

0: मिले जाए जाएगी क्रमिशन टुमारो रात 11 AM ब्रांच रोड लालमाटी में ब्रांच रोड लालमाटी में 67 साल के 67 इयर्स ओल्ड श्री विनोद माथुर जो पाकुन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती अंजनी माथुर के मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

So well friends, आपका हम warm welcome कर रहे हैं 3:07 Thursday afternoon 9th of July. It's time for your Bombay Talkies. मैं हूँ परी आपके साथ, अभी टाउन की खबरों के साथ कुछ beautiful songs कर रहे हैं आपका इंतजार, आपकी दोपहर को खास and special बनाने. हमारा साथ है on Radio Masti. Enjoy this one.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, अंजलि आनंद इस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही है। साल 2023 में करण जौहर की रॉकी रानी की प्रेम कहानी से लेकर अब मल्टी स्टारर फिल्म धमाल 4 में उनका मेन रोल है। हाल ही में अंजलि ने इंडिया टुडे और एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत के समय उन्होंने बताया कि कैसे लोग उनके वजन का मजाक उड़ाते हैं, और ये तो हम जानते हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन उनके ओवरवेट होने की वजह से वो कहती हैं कि वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर ले, लेकिन लोग जो है वो सबसे पहले उनका वजन ही नोटिस करते हैं। So, ये कहना है अंजलि आनंद का, जिन्हें हम बहुत ही जल्द देखने वाले हैं इन द फिल्म धमाल 4। सो वेल, इसके लिए हम करेंगे इंतजार कि अब वो जो मेन रोल है वो लोगों को कितना पसंद आने वाला है। सो बस आप हमारा साथ देते रहिए दोस्तों। नॉट टू फॉरगेट, बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

एंड वेल फॉर फ्रेंड्स धमाल 4 ये फिल्म तो चर्चाओं में है ही, लेकिन इमरान हाशमी के फैंस आपके लिए भी कुछ खास जरूर है. आवारापन 2 उनकी फिल्म जो जल्द रिलीज होने वाली है, उसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुबोध शर्मा की आवाज. एंड सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, दैट्स द लेटेस्ट वन फ्रॉम आवारापन 2. एंजॉय दिस वन.

0: Talkies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: और चलिए दोस्तों, इट्स 3:51 एंड इट्स टाइम टू रीड आउट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल ऑन 5499-1294. तो थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आपने मेरा यानी कि परी का साथ दिया ऑन रेडियो मस्ती. एंड दैट वाज योर बॉम्बे टॉकीज. बस एक और प्यारा सा गाना होगा आपके नाम और उसके बाद इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. जाते जाते कहते हैं एंजॉइंग द वेदर, हमारे सभाई अपाडू परिवार फ्रॉम होशनुआ हमारा साथ दे रहे हैं, सो हैव अ वंडरफुल टाइम. नेक्स्ट गाना होगा फॉर स्वीट बेबी अंजलि, उनके लिए बहुत सारा प्यार ये भेज रहे हैं काव्या और उनके लिए गुड विशेस एज वेल. चलिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बहुत सारे लिसनर्स यहाँ पर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पिक्चर जहाँ पर आप अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं. दैट्स कमिंग फ्रॉम यलेश और सभी शाम परिवार ऑफ सुरिनाम हमारा साथ दे रहे हैं. सो अगला गाना होगा आपके लिए डेविस से, साथ दे रहे हैं आप लाल माटी से एज ऑलवेज कनेक्टेड हमारे रेडियो स्टेशन के साथ. सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल ट्रैक कमिंग अप फॉर यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल आफ्टरनून. एंड कहते हैं गुड आफ्टरनून, प्लीज प्ले गाना फॉर अब्दुल एंड सायरा बानो, जरूर चलाने वाले हैं एक प्यारा सा गाना फॉर दिस वंडरफुल कपल, साथ देने के लिए शुक्रिया. और चलिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी विजया जी भी साथ दे रही हैं, कहती हैं आवारा पंटू का गाना वो अच्छा है और उसमें वो सैयारा की थोड़ी सी वाइब्स है एंड मे बी द सेम म्यूजिक डायरेक्टर, यस पॉसिबल, और साथ ही वो मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी हो ऐसा लग रहा है और सैयारा का जो वाइब है वो आप तक पहुँच रहा है. सो यस दैट्स आवर आवारा पंटू और जुनून गाना एंड यस इट साउंड्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग. और उम्मीद करते हैं ये गाना भी उतना ही पॉपुलर हो. थैंक यू सो मच विजया जी इन बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए. और अगला गाना होगा आपके नाम, विशिंग यू अ वंडरफुल आफ्टरनून. एंड यहाँ पर वीना जगिसा फ्रॉम बेलवी मोहल कहती हैं गाना हो जाए सभी परिवार सभी दोस्तों के लिए एंड फॉर रेडियो मस्ती टीम. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद. श्याम देवीचंद पे बेस लिसनिंग एंड इस वक्त डोमिनो खेल रहे हैं दोस्तों के साथ फुल वॉल्यूम पर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर फ्रेंड्स लालदेव राजू बलदेव लाला मुकुल एंड सभी देवीचंद परिवार ऑफ पेवे. दैट्स रियली स्वीट, सो हैव अ वंडरफुल टाइम अपने दोस्तों के साथ. और यहाँ पर गाना फॉर सरोज वीना कुमारी गीता ज्ञानती, दो भाई है संजय एंड विजय, ललिता जीतन परिवार के लिए भेज रही हैं बहुत सारा प्यार. सो अगला गाना होगा आपके नाम. एंटीना साथ दे रही है, कहती है सन्नी सन्नी मौसम को एंजॉय कर रही हूँ और साथ ही गाना फॉर ऑल माई लव्ड वंस. सो

टाइम हम जानते हैं बहुत सारे लोग इस वक्त काम में फंसे होते हैं, कुछ लोग घर पर होते हैं, कभी कभार आप काम से भी वक्त निकाल कर हमें मैसेजेस पहुंचा देते हैं, सो इट मीन्स अ लॉट। सो तहे दिल से आपको कहेंगे थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड हमारे इस प्यारे रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती के साथ। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। मेरे बाद आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स, कुछ प्यारे गाने आपको सुनाएंगी, आपके दिल को बहलाएंगी, तो बस उनका साथ दीजिए। मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज। तो जाते जाते एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह अरमान खान, हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, अ ब्यूटीफुल ट्रैक, हैव अ वंडरफुल टाइम।

0: Beautiful and mesmerizing song, especially for you on R2 Radio Masti. That was Arijit Singh and Arman Khan ki awazon mein, especially for you. So stay tuned and stay connected on your number one radio station. Filhal ke liye, just check your time. It's exactly 4 PM.
1: R2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musty.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार गिनीशा. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कदो में आवा टेक्नो पार्क कार्यरत हो गया है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल शाम इसका औपचारिक उद्घाटन किया. हाई प्रिसीजन मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले इस टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण में 42 मिलियन यूरो निवेश किए गए हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर इससे 4,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना बजट 2026-2027 की रणनीतिक दिशाओं के अनुरूप हैं और नए और उभरते सेक्टर विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल ऊर्जा. ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में प्लवाल रेखाओं को खतरा हो रहा है. मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत भगुली ने अपना कैरियर इन नासुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके. उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा. इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राष्ट्र संघ में समंदर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था. मंगलवार को मार्शमैलो निगलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है. एक ऐसी ट्रेजेडी जो तो दम घुटने की स्थिति में तुरंत सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व पर जोर देती हैं. अधिकारीगण आगाह कर रहे हैं कि मार्शमैलोज, गमी, कैंडी, लॉलीपॉप आदि के साथ साथ लीची, अंगूर, लोंगान जैसे फलों को लेकर भी सावधानी बरतें. बच्चों को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में होकर करना चाहिए क्योंकि इनके निगलने से दम घुटने का खतरा रहता है. विदेश में यॉर्कशायर और उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में एम्बर हीट हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है. आज कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान है. यूके में एक हफ्ते के अंदर अंदर तीसरी बार भीषण गर्मी की लहर की चेतावनी जारी की गई है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2.

Welcome to Check Your Time Studio की घड़ी में exactly 4:08 हो चुका है. So wishing all of you a very good afternoon. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम. So my dear lovely listeners, आप सभी लोगों का स्वागत है in your Raftar Vibes. That's your feel me right on RMT Radio Mastia. और आज है already Thursday the 9th.

0: 9 जुलाई 2026। तो ठीक है जी, और अब शुरू हो चुका है वो फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, यानी कि घर जाने का टाइम। किसी के लिए फैमिली वेट कर रही है, या किसी के लिए गर्मा गर्म चाय, और किसी के लिए बस अपना कम्फी सोफा। तो जो भी आपका डेस्टिनेशन हो, सफर हमारे साथ और म्यूजिक के साथ ही मस्त बनेगा। तो डोंट Not to worry, हम तो बस बोलते हैं कि बेस्ट सॉन्ग्स आर स्टिल कमिंग टू योर वे। हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे स्पेशली फॉर यू, जस्ट टू मेक यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल राइड। बिल्कुल जी, सुबह कल आप अपना सीट बेल्ट जरा बांध लीजिए, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए, और जो गाड़ी का शीशा है ना थोड़ा सा खोल लीजिए, ठंडी ठंडी हवा आने दीजिए। एंड नॉट टू वरी, धीरे धीरे गाड़ी चलाना और हम साथ देंगे विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। तो चलिए जी, वी गॉट यू सम लवली गानों का सिलेक्शन और साथ में ट्रैफिक अपडेट्स, स्पोर्ट्स अपडेट्स एंड बहुत कुछ और। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। और हम है गिनिशा, जो देंगे साथ आपका रात के 7 बजे तक। सो रेडी, इफ यू आर हिटिंग द रोड ड्राइव केयरफुली, एंड हियर वी गो, दिस वन गोज़ आउट टू यू, जस्ट चिल मेरी जान। Bilkul ji, I'm here to spread good vibes. Here we go. I've got it, Sonu Nigam and Jayesh Gandhi aur Amika Kaka ki awaazon mein, specially for you. Taken from the movie Maine Pyar Kyon Kiya.
1: RM2 Radio Masti.

to Radio Mustang.

0: खूबसूरत गानों का सिलेक्शन से लेकर आए हैं स्पेशली फॉर यू माय डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए. और जैसे कि आपको पता है यस्टरडे आल्सो वी हैड अ गेम. आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते. आई हैव गॉट अ कैन डू फॉर यू माय डियर. यस यू कैन बी द लकी विनर. व्हाट यू हैव टू डू जस्ट पार्टिसिपेट. पूछेंगे एक सवाल, आपको बस सही जवाब देना है ऑन 5499-1294-5499-1289. यू सेंड मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम. पूछेंगे एक सवाल और सही जवाब देने पर यू कैन विन अ टिकट टू वॉच लाइव द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत. जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक से सुना. यू कैन प्ले विद एमबीसी एंड विन अ टिकट टू वॉच लाइव द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य. सो स्टैंड अ चांस टू विन द टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य. एंड इट्स गोना बी लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 25th of July 2026 एज़ फ्रॉम 7:30 PM एट SVICCR पाई. And well, देखा जाए यू कैन स्टेप इन टू अ वर्ल्ड ऑफ नोस्टाल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड्स गोल्डन एरा. एंजॉय एंड अ लवली इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स और प्योर म्यूजिकल जो मैजिक होता है. सो टिकट्स जो है ऑलरेडी ऑन सेल एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 850 rupees एंड इट्स अवेलेबल एट mooticket.mu एंड रिजो ओटायू. एंड डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस. ग्रैब द टाइम राइट नाउ राइट अवे फॉर योर रिजर्व. You can call on the hotline 466-9999-466-9999. तो चलिए जी पूछेंगे एक सवाल, आपको सही जवाब देना है ऑन 5499-1294 पर. आपको सुनाएंगे एक डायलॉग, आपको बस मुझे बताना है ये जो डायलॉग है इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी.
1: I'm sorry.
2: क्या कहा आपने?
1: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
0: बिल्कुल जी, इवन ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती ऐसे हम बहुत ही आसान आसान छोटे छोटे सवाले पूछते रहते हैं. आपने ठीक से नहीं सुना, आप दोबारा सुन लीजिए. एंड प्लीज डू लेट मी नो दिस डायलॉग इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी.
1: आई एम सॉरी.
2: क्या कहा आपने?
1: आई एम सॉरी. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
0: बिल्कुल जी, ये छोटी छोटी बातें को छोड़ दो. आप जल्दी से मोबाइल उठाइए और टाइप करना शुरू कर दीजिए द राइट आंसर एंड सेंड इट टू मी राइट नाउ ऑन 5499-1294 पर और बन जाए आज का लकी विनर. यू नेवर नो, अगर लक ने आज आपका साथ दे दिया ऑफ कोर्स आप बनेंगे लकी विनर ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ट एंड यू गोना विन अ टिकट टू वॉच लाइव अभिजीत इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस. बेस्ट ऑफ लक टू यू. 5499-1294 फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ.
3: RM2 Radio Mustang.

0: बिल्कुल जी, हम भी तो कहना चाहेंगे ऑल कूल बॉयज कम ऑन, अपने हाथ ऊपर कर लीजिए एंड से इट टुगेदर, ओम शांति ओम। लेकिन इफ यू आर ड्राइविंग, ना बाबा ना, ऐसा ना करना, हाथ दोनों जो हाथ है ना स्टीयरिंग पे ही रखना। लेकिन ऑल जो हॉट गर्ल्स हैं आप हमारे साथ बोल ही सकते हैं ना, ओम शांति ओम। बिल्कुल जी, आई हैव गॉट यू द बेस्ट म्यूजिक सिलेक्शन फॉर दिस ब्यूटीफुल थर्सडे आफ्टरनून एंड आई रियली होप दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड हैविंग सम गुड टाइम। अरे ऑफिस से निकल चुके हो तो ऑफिस का टेंशन वहीं छोड़ के घर पे जाना जी। अगर अभी अपने दोस्तों के साथ तफरी मारने जा रहे हो, सो डू एंजॉय द गुड टाइम, क्रिएट एंड रिक्रिएट दोज लवली मेमोरीज, क्योंकि टाइम जो है ना लौट के वापस नहीं आता है। वेलकम, इस टाइम बीटा चला जा रहा है, 4:32 हो चुके हैं, इट्स मेगिन शॉन द माइक साथ देने के लिए। आई रियली होप कि जितने लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया है बाय गिविंग मी द राइट आंसर्स, दे आर ऑल वेटिंग टू नो कि कौन बनेगा आज का लकी विनर। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टू ईच एंड एवरी वन, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यू गाइज यू डिड पार्टिसिपेट, एक भी गलत जवाब नहीं मिले हमें। दैट्स अ गुड टू नो कि सभी लोग जो है दे आर पेइंग अटेंशन, सो एक भी गलत जवाब नहीं मिले, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बट एज पर द रूल ऑफ द गेम आई शुड हैव only one lucky winner, और आज lucky draw में किसका नंबर निकल आया है अभी थोड़ी देर में जरूर बताएंगे। सबसे पहले आपको फिर सुनाएंगे सवाल, हमने पूछा था कि ये जो डायलॉग है कौन सी मूवी से लिया गया है।
1: I'm sorry.
2: क्या कहा आपने?
1: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: बिल्कुल जी, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं और बड़े बड़े गिफ्ट हम देते रहते हैं, यानी कि यू कैन विन अ टिकट यस वर्थ 800 रुपीस ऑफर टू यू this afternoon for to watch the concert live of Abhijit Bhattacharya. It's going to happen on 25th of July 2026 as from 7:30 PM at SVICC. और आज का lucky winner कौन है, यानी कि आदेश बिसनरी फ्रॉम बेलमेर। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू आदेश। Congratulations to you, buddy. You are the lucky winner. You are winning a ticket to watch live in concert Abhijit. So thank you so much for participating. There will be someone calling you from the embassy.

0: here to let you know how you're going to collect your ticket. So thank you so much and congratulations to you aur baki jo hamare listeners hain jinhone aaj participate kiya hai. Try your luck some other time. Other time kyun hum aapko phir se rendezvous de rahe hain. I'll be having another game between 6 to 7 p.m. on R2 Radio Masti. और फिलहाल के लिए चलिए लेट्स गेट बैक टू सम लवली मेमोरीज आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में जरा सा जुमलू में टेकन फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड द राइट आंसर इज द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिस इज इट और ये गाना हमारी तरफ से खासकर आपके नाम ऑन
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musty in the mix.
3: Well, guys, 4:42 हो चुके हैं एंड स्पोर्ट्स गुरु इज ऑलरेडी हियर इन द स्टूडियो टू किक ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड लवली स्पोर्ट्स न्यूज़ फॉर यू. सो गुड आफ्टरनून. आज कौन सी खबर लेकर आए हो?
4: बहुत आज एवरीवन वेटिंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स टू स्टार्ट और आज शुरू होगा और सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि फ्रांस को मोरक्को रोक सकता है या नहीं.
3: मोरक्को
4: अब मोर माने मैं खुद रुक जाऊंगा, कहीं मोरक्को खुद रुक जाए.
3: I wish.
4: Okay, तो ये on paper France favorite है और यहाँ पर अभी मैं BBC Sports में एक article देख रहा था. Are France beatable? BBC experts इस पर अपनी राय दे रहे हैं और सभी लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि France are the most clear favorites for this World Cup. इससे पहले ऐसा clear favorite नहीं था, लेकिन इनको हराया जा सकता है. और 5 games played, 5 games won, 14 goals scored, 2 conceded. और अभी तक मैच दर मैच में नए नए अंदाज दिखाते जा रहे हैं. किलियान एम्बापे लगता है कि ही स्कोरिंग फॉर

join or the likes of Michael Olise, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, ये मान लो एक खतरनाक जानलेवा थ्रियो बन गए हैं. सो उधर फी है कि कभी भी मैच में ये लोग आकर मैच का रुख बदल सकते हैं द वे अर्जेंटीना डिड अगेंस्ट इजिप्ट. तो ऐसे में डेसिरे डुए और रायन चर्की जैसे रिजर्व भी हैं. सो डर लगता है लेकिन मोरक्को को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा. ये टीम पिछली बार सेमीफाइनल में पहुंची थी एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, पिछले वर्ल्ड कप में 2022 में कतर में ये दोनों सेमीफाइनल में मिले थे. फ्रांस की जीत हुई थी 2-0 से लेकिन वो स्कोर जो था इट डिडंट रिफ्लेक्ट द मैच एक्चुअली, क्योंकि मैच में मोरक्को ने अच्छा फुटबॉल खेला था. फिर भी फ्रांस रियलिज्म एज वी से उनकी जीत हुई थी. लेकिन अब पाराग्वे के खिलाफ हमने देखा फ्रांस को अगर एक फिजिकल फुटबॉल का सामना करना पड़े तो उनको रोका जा सकता है. इट्स ओनली एक पेनाल्टी पर किलियान एम्बापे ने गोल स्कोर किया था. प्रॉब्लम ये है कि आज मोरक्को में साइबारी उनका जो मेन स्ट्राइकर है शायद आज मैच नहीं खेल पाएगा. इंजुरी लिस्ट इधर भी है. चुआमेनी जो खेलता है फ्रांस के लिए अभी तक पता नहीं कि वो खेल पाएगा या नहीं, फिट नहीं है कम्प्लीटली. सो फ्रांस बाकी टीमों को चांस देती है इसलिए अगर मोरक्को चांस ले सो दे कैन बीट, दे कैन गिव देम सम प्रॉब्लम्स. लेकिन आगे चलकर देखना होगा, आज के इस मैच से पता चलेगा कि किस तरह से फ्रांस ने गियर शिफ्ट किया है या फिर मोरक्को की टीम ने नेदरलैंड्स को हराया और दैट विल गिव देम कॉन्फिडेंस कि अगर नेदरलैंड्स को हराया तो फ्रांस को भी हरा सकते हैं. मोर लेस ये मैच आज आप लोग देख पाएंगे लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर और एमबीसी स्पोर्ट्स ऐप में भी. ये लगभग ये मैच मिडनाइट किक ऑफ होगा 12 बजे. इससे पहले स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक स्पेशल प्लाटो ऑन रूट वेयर न्यूयॉर्क. सो फ्रांस मोरक्को आज का मैच होगा और कल फ्राइडे को क्वार्टर फाइनल दूसरा स्पेन अनदर बिग फेवरेट. स्पेन रात्रि के 11 बजे बेल्जियम से लोहा लेगा. सैटरडे को मैच देखना है तो रात जगाई है क्योंकि संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, फिर मंडे सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड. सो इस वीकेंड के बाद यानी मंडे सुबह तक पता चल जाएगा कि कौन सी वो चार टीमें हैं हु मेक इट टू द सेमीफाइनल्स और कौन सी वो चार टीमें हैं जो वर्ल्ड कप को अलविदा कहेंगी. अभी तक मोरक्को का सफर अच्छा रहा है, सेम फॉर बेल्जियम, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड. तो अब बिग फेवरेट्स देखेंगे क्या है आगे इन सब मैचों के बाद. और ये भी सभी लोग बात कर रहे हैं किस तरह से केन और अलोन को कंपेयर किया जा सके, ये बात करेंगे जब इन दोनों के बीच मैच होगा. तो ट्रांसफर न्यूज, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी के सांतोस को साइन कर लिया है और इससे पहले अटलांटा का मिडफील्डर भी आ गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में. दैट मीन्स कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस मिडफील्ड में सांबा नाचेंगे. कैसेमीरो गया तो दो आ रहे हैं वहां से. इसी तरह जो 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर क्वेंडा को साइन किया चेल्सी ने और एक दो खिलाड़ी आएंगे इधर उधर, इन पर आपको जानकारियां देंगे. टूर डे फ्रांस की बात करें, क्रिज ने एक काउटिक स्प्रिंट फिनिश किया स्टेज 5 में. अब इस बार तादेज पोगाचार ही इज 7 मिनट्स पीछे. तो इसमें ओवरऑल में अगर देखें इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट दिस टाइम. लेकिन आगे क्या होगा यू नेवर नो. अभी पहाड़ी इलाके आएंगे तो ये जो मेन फेवरेट है दे कैन डू देयर बेस्ट. क्रिकेट की बात कर लें, क्रिकेट इसमें काफ़ी मैच खेले जा रहे हैं चारों तरफ. जिम्बाब्वे बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए 209 रन. इधर इंडिया 19 श्रीलंका 19 चल रहा है और इसमें श्रीलंका अंडर 19 वन बाय 1 विकेट लास्ट गेंद में. इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4th T20 ये ब्रिस्टल में आज खेला जाएगा. सो ये मैच 8:30 बजे. 2-0 से इंग्लैंड की टीम आगे है और दो मैच बचे हैं. अगर आज इंग्लैंड की टीम जीतता है सो दे विल विन द सीरीज. उधर लॉर्ड्स में टेस्ट मैच इंग्लैंड वीमेन अगेंस्ट इंडिया वीमेन ये कल खेला जाएगा. सो डोंट फॉरगेट द बिग मैच आज फ्रांस वर्सेस मोरक्को.
एमबीसी टीवी पर।

0: पोथ 11 पर चार क्वार्टरफाइनल में से तीन दिखाए जाएंगे आज, कल और परसों. फिर दो सेमीफाइनल और द थर्ड प्लेस मैच द फाइनल वेयरएज इन एमबीसी आप सभी मैच आप लोग देख पाएंगे. और हर मैच से पहले हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं दे विल बी हैविंग ए प्लाटू, स्पेशल प्लाटू ऑन रूट वेयर न्यूयॉर्क, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स पंडित जो है मॉरिशस से आकर एनालाइज करेंगे इनका पाकू क्या रहा और हर मैच में किस तरह से. तो आप लोग आज देख सकते हैं मैच शुरू होने से पहले लगभग 11 बजे ये होगा एमबीसी के स्पोर्ट्स 11 पर. इधर आपको बताते रहेंगे डोंट फॉरगेट स्पेशल सेगमेंट जो साढ़े 8 बजे लेकर आते हैं एवरी मॉर्निंग वर्ल्ड कप मैगजीन.
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट,
3: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
4: आरएम2.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: ट्रैफिक अपडेट।
3: तो चलिए जी, टाइम बीटा चला जा रहा है और फिलहाल के लिए लेके जाएंगे स्ट्रेट वे फॉर योर ट्रैफिक अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है आपकी रश आवर ट्रैफिक अपडेट का। सो अगर आप ऑफिस से निकल चुके हैं या अभी स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं तो ये अपडेट स्पेशली आपके लिए। सबसे पहले पोटवी से निकलने वाले ड्राइवर्स के लिए, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की डायरेक्शन में, ट्रैफिक अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है और अभी व्हीकल्स जो है मूव कर रही है, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग रश बढ़ेगा कंजेशन भी इंक्रीज होने वाला है। सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। वेडर जो है स्ट्रेच पर भी ट्रैफिक स्लो हो चुका है और इसलिए अगर आप इस रूट को यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए और पेशेंस बनाए रखें। रेजवी से फिनिक्स तक ट्रैफिक स्टेडिली बिल्डअप हो रहा है और व्हीकल्स की वॉल्यूम लगातार बढ़ रही है और फिनिक्स से साउथ मोटरवे पर ट्रैफिक स्लो है, लेकिन अच्छी बात ये है कि फ्लो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बस अननेसेसरी लेन चेंजेस अवॉइड कीजिए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और कैथरबोन और रोजिलाज एक्सपेक्टेड माय डियर, जहां इवनिंग रश ने अपनी एंट्री मार दी है, ट्रैफिक ऑलरेडी जाम है, तो अगर आप इसी एरिया में हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम ज़रूर प्लान कीजिए। और अभी के लिए हम तो बस इतना कहेंगे कि पेशेंस रखें, इंडिकेटर्स का यूज़ कीजिए और फ़ोन को साइड पर रखें और कर्टेसी दिखाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी को मर्ज करने देना भी ट्रैफिक को स्मूथ बना देते हैं। हम आपको देते रहेंगे लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट और साथ में वो म्यूजिक जो सफर को बना देते हैं और भी एंजॉयबल। सो ड्राइव सेफ, स्टे पॉजिटिव और हमारे साथ ही रहे ऑन R2 रेडियो मस्ती।

0: My dear lovely listeners, welcome back in the second hour of this beautiful show, and that's your lovely Hereftar Vibes, your filmy rides. With me, Hyaginisha, and while check your time, 5:16 ho chuke hain, wishing all of you, jinhone abhi abhi hame join kiya hai, a very good afternoon. Namaskar ji, Hyaginisha ka pranam. So, kaise hain aap sabhi hai log, jo hamare pyare pyare listeners hai. Waise agar aaj kisi ne apne aap se poocha ne ki how was your Thursday, main to zarur poochna chahungi, how's your day going? Abhi to din baki hai, I just want to know, subah se आपने क्या क्या किया है. तो बस इतना कहना कि अभी तो मस्त चल रहा है, क्योंकि रेडियो पे सिर्फ गुड वाइब्स और हिट सॉन्ग्स चल रही है मेरी जान. सो कीप ऑन स्माइलिंग एंड टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, कीप ड्राइविंग सेफली, और म्यूजिक को दिल से एंजॉय करते रहे, और ये सफर भी यादगार जो है जरूर बनेगा, क्योंकि आई हैव गॉट यू द बेस्ट ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन. और साथ साथ में जरूर बताना हमें आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं. टू ऑल दोस जो बस में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हो, अगर अभी फ्री है, लेकिन जिस Send me a text or do it right now, right away on 5499-1294 par. Koi bhi traffic update hai, aap hamare saath share karna chahoge, 5499-1294, do it right now, right away. And all those jo already ghus chuke hain kitchen mein khana banane ke liye, courage to you, my dear, and all those who are still at work, bon courage to you.
1: RM2, Radio Masti.

To all our lovely, lovely listeners jo saath de rahe hain, thank you so, so much. Yeah, I've got you such beautiful engane here, especially for you. Yes, it is actually for you. Itna kimti waqt nikal ke jo hum chun-chun kar rahe hain. Lekar aate hain some special song just to bring the good vibes. And I really hope you're feeling good. I know, kabhi-kabhi kya hota hai, we don't have a good day. Maybe you're having a bad day, just shake it off. Ho jata hai, kabhi-kabhi you can't just have good days every day. Kabhi-kabhi bad days bhi hota hai, but that doesn't mean that you'll just look up and sit up like that. Aap bas baith jaiye aaram se and enjoy your kijiye. Good music, क्योंकि good music के साथ हमेशा हम यही कहते हैं कि mood जो है एकदम से पद से बदल सकता है. So Thursday afternoon का ये golden rule है मेरी जान की, stress को करो mute और music को करो full on volume. अगर आज का दिन थोड़ा hectic था, अब वक्त है उस tension को पीछे छोड़ने का. हर गाने के साथ mood और भी light हो सकता है. Smile करो, drive safe करो और याद रखो कि weekend is almost saying hello to you and Ganesh is here with some good music to give you some lovely company. 54991294 पर I've got your dedications and here we go. ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उस इंसान के लिए जिसने बोला है कि आई होप फ्रांस इज एबल टू स्टॉप मोरोको. यस, मैं उन्होंने खुद बोले ना मोरोको, वो रुक जाएंगे, आप फिकर मत करना. आई जस्ट विद दैट मोरोको मोरोको. सो नाइस टू हियर लवली वॉइस किनी एंजॉयिंग अ वंडरफुल शो. राधा हियर फ्रॉम कनाडा. हे, कैसे हो आप? अगला गाना आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए जो हमें बड़े प्यार से शिद्दत से साथ दे रहे हैं, आपके फैमिली इन मॉरिशस के लिए, लिसनर्स के लिए, थैंक यू सो मच. हे, कैसे हो मेरी जान? आपकी जान एकदम ठीक है. आप कैसे हो स्वीट लवली? मतलब कि आप हो हमारी प्यारी शेन अश्विन जोगी, यानी कि शेना फ्रॉम रिविया जोरापा, है ना. सो डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन फॉर यू शेनाज जोगी एंड सब परिवार दोस्त के लिए शुक्रिया मेरी जान. अच्छा लगता है ना जब आप लोग ऐसे मुझे मेरी जान बुलाते हो. आई फील सो क्लोज टू यू गाइज. We do have Neema Jibban. Maudal Bese, garma garam khana pak raha hai aapke kitchen mein. So you are listening to the show and waiting for hubby to come home. So gana ho jai aapke husband, handsome husband ke liye, jinka naam hai Vishal. Aur aapke teen bete hai, yaani ki Yadav, Nilesh and Viresh. Hamari team ke liye, thank you so much honey. Hey Lalita Jitan ji, kaise ho aap? Ye agla gana specially aapke liye hum dedicate karna chahenge. And you are from Lavanch, your song is rocking, yeah. Thank you so much. Aur sirf मेरे लिए आज अगला गाना, थैंक यू स्वीट हार्ट. सो चलिए कुमार देवीचन, दैट्स श्याम देवीचन जी ऑफ पेरेबिया, एंजॉयिंग अ शो एंड घर पे हैं गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पी रहे हो, दैट्स सो स्वीट. तो चलिए जी एक चाय का प्याला हो जाए हमारे नाम और खूबसूरत गाने बस ऐसे बजेंगे आप लोगों के लिए. सो जस्ट सिट यू एंड स्टे कनेक्टेड एंड ऑल दोस हु आर हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली बाबा, ये गाना आपके लिए.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: बिल्कुल जी, हमेशा लेकर आते हैं आप लोगों के लिए आपके फैशन टिप्स इन योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स। सो विंटर सीजन ऑफिशियली ऑन है और अगर एक एक्सेसरी है जो स्टाइल भी बढ़ाए और ठंड से भी बचाए, पता है ना क्या है, वो है एक क्लासिक स्कार्फ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप और भी स्टाइलिश लगना चाहोगे सो वाई नॉट अ स्कार्फ। सिर्फ नेक के अराउंड रैप करने के लिए नहीं होता है आजकल ओवर साइज स्कार्फ्स जो शोल्डर्स पर कैजुअली ड्रेप करना बहुत ट्रेंडी है। एक सिंपल आउटफिट भी इंस्टेंटली शिक और कोजी लगने लग जाते हैं। अगर आप न्यूट्रल कलर्स पहन रही हैं तो मस्टर्ड बर्गंडी फॉरेस्ट ग्रीन या डीप ब्लू स्कार्फ ऐड करके अपने लुक को पॉप दे सकते हैं। और अगर आउटफिट ऑलरेडी कलरफुल है तो बेज क्रीम या ग्रे स्कार्फ परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करेगा। बिल्कुल जी लेडीज, एक सिल्क स्कार्फ जो है को हैंडबैग के हैंडल पर टाई करके या जो है एक्सेसरी की तरह यूज करते हैं वो भी स्टाइलिश विंटर टच दे सकती है। और जेंटलमैन ऑफ कोर्स आपको हम नहीं भूले हैं, एक नीटली फोल्डेड जो वुल स्कार्फ ब्लेजर या जैकेट के साथ हमेशा टाइमलेस और क्लासी लगता है। और एक बोनस टिप जरूर, स्कार्फ को सिर्फ फैशन के लिए नहीं कंफर्ट के लिए भी यूज कीजिए। अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स में मॉरिशस की विंटर ब्रीज काफी चिली हो सकती है, तो इस विंटर स्टे वार्म स्टे स्टाइलिश। और याद रखिए कि कभी कभी एक सिंपल स्कार्फ ही पूरे आउटफिट का स्टार बन जाता है। सो जस्ट डू इट एंड यू गोना टेल मी लेटर ऑन।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

0: नशे की बात अगर हम करें तो हम तो म्यूजिक का नशा लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और हम म्यूजिक में ऐसा नशा है मेरी जान की अच्छो अच्छो को पीछे छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल जी, एंड आई रियली होप दैट इवन ये नशा आपकी जिंदगी में एकदम घुल चुका है, एंड दैट यू आर एडिक्टेड टू आरएमटी रेडियो, मस्ती योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। अभी तो 5:55 हो चुके हैं, एंड इट्स टाइम फॉर यू तो जस्ट वेट, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए 6 के समाचार, और उसके बाद गुड म्यूजिक कंटिन्यूज। और थोड़ी देर पहले जैसे वी हैड अ गेम जहां पे हमने दिया था एज अ गिफ्ट वाउचर, यस इट वाज अ टिकट एक्चुअली, 1 टू वॉच लाइव इन कॉन्सर्ट अभिजीत द सिंगर ऑफ बॉलीवुड अभिजीत भाट्टाचार्य इन मॉरिशस लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन 25th of July। सो वाई नॉट यू कैन विन वन मोर टिकट, सो जस्ट बाई पार्टिसिपेटिंग। तो अभी आप वेट कर लीजिए समाचार के बाद, ऑफकोर्स विल बी हैविंग वन मोर गेम। Stay tuned and stay connected with Kinesha on RMT Radio Masti.
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावती।

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मसीह. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 पीएम.
1: ऑन टू रेडियो मसीह.
2: The time is brought to you by

0: गुरुवार 9 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एंडोवैस्कुलर मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले आवा टेक्नोपार्क का कल उद्घाटन किया गया। इसके निर्माण में अभी तक 1 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है, जिससे अब तक 200 कुशल नौकरियां पैदा हुई हैं और 2 इमारतें कार्यरत भी हो गई हैं। आज पोतवी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और सिंगापुर के उच्चायुक्त लिम मिंग यांग के बीच रस्मी मुलाकात हुई। मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन मजबूत करने के साथ साथ निवेश आकर्षित करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंगापुर मॉरिशस को अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी देखता है। बूस्ट टू लोकल प्रोडक्शन स्कीम अब सहकारी संगठनों के लिए उपलब्ध है। ये सहायता योजना कृषि एवं खाद्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रति परियोजना 3 लाख रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने मॉरिशस में कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए एक नई रणनीतिक योजना तैयार करने के तहत आज सुबह आयोजित एक कार्यशाला में इस बात की घोषणा की। मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बागुली ने अपना कैरियर कोरल्स के नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके। उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। और विदेशी स्तर पर जोरदार ट्रॉपिकल तूफान माइसाक ने दक्षिण चीन पर किया है प्रहार। कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तय हुआ है, जब कल कुदो में आवा टेक्नोपार्क का उद्घाटन किया गया। आवा टेक्नोपार्क एंडोवैस्कुलर मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखता है। इसके निर्माण में अभी तक 1 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है, जिससे अब तक 200 कुशल नौकरियां पैदा हुई हैं और 2 इमारतें कार्यरत भी हो गई हैं। इस परियोजना का उद्घाटन कल शाम कई महानुभावों की उपस्थिति में किया गया। इनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीनाना रामगुलाम तथा मॉरिशस के लिए फ्रांस के दूत फ्रेडेरिका बोनटेम शामिल थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मॉरिशस को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने तथा युवाओं के लिए रोजगार पर बल दिया। सिंचा मोटू की रिपोर्ट पर विवरण रजनी बेकर का।
1: 54,000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल क्षेत्रफल पर कायम आवा टेक्नोपार्क मॉरिशस का पहला टेक्नोलॉजी पार्क है, जो उच्च टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्पित। नाटक मेडिकल मॉरिशस में 25 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सा सामान तैयार करती है और वो आवातक टेक्नोपार्क का पहला ऑक्यूपेंट है। कंपनी हर साल अमेरिका, यूरोप और भारत की ओर करीब 1 मिलियन कैथेटर्स का निर्यात करती है। नाटक मेडिकल के सीईओ स्टेफान लिफेवर ने कहा,
2: dans sa concept-

0: question, Ava Technopark a travaillé aux côtés de Natech Medical.
1: Ava Technopark Natech Medical के साथ काम करता रहा है ताकि चिकित्सा सामान तैयार करने के लिए समर्पित एक उचित वातावरण कायम किया जाए. इमारत में संबंधित क्लीन रूम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल हैं, प्रवेश सुरक्षित है. इस परियोजना के साथ मॉरिशस को इस क्षेत्रफल में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर की तरह स्थापित करने की महत्वाकांक्षा है. आवा के संस्थापक एवं अध्यक्ष वैसों लागौत ने कहा, 1 बिलियन रुपए से अधिक की रकम निवेश की जा चुकी है. 5 लाख टिकाऊ एवं क्वालिफाइड नई नौकरियां पैदा की जाएंगी. आने वाले वर्षों में अन्य इमारतें भी बनाई जाएंगी ताकि औद्योगिक क्षमताएं विकसित की जा सके. आवा टेक्नोपार्क को टिकाऊ इनोवेटिव मॉडल की तरह कायम किया गया है. ये केवल एक सामान्य फोटोवोल्टाइक पैनल्स नहीं, बल्कि हमने देश में स्मार्ट ऊर्जा संपन्न इकोसिस्टम विकसित किया है. 1.3 मेगावाट सोलर पैनल्स, 2.2 मेगावाट स्टोरेज बैटरी और एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली. स्थल करीब 80% रूप से ऊर्जा को लेकर स्वायत्त है.
2: L'énergie excédentaire alimente nos bornes de recharge pour véhicules électriques.
1: फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा,
3: ce qui a été créé ici, cela a été dit, c'est un fleuron technologique.
1: यहां पर जो कायम किया गया है वो टेक्नोलॉजिकल पार्क है जो पूरी तरह से मॉरिशन है और साथ में फ्रांसीसी भी. ये संबंध समान विजन पर कायम हो सकता है. मॉरिशस की ही तरह समान मूल्य भी है, जैसे कि ठेकेदारी, कायम करने की स्वतंत्रता, भाईचारा, अधिकार, बहुपक्षीयता आदि. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुड़ाम ने कहा कि नौजवानों का भविष्य मॉरिशस में है. उन्होंने कहा,
4: L'avenir de nos jeunes ne va pas se construire pas seulement dans les secteurs traditionnels.
1: हमारे देश के नौजवानों का भविष्य केवल परंपरागत क्षेत्रों पर ही निर्भर नहीं करेगा, ये प्रयोगशालाओं और रचना केंद्रों में भी संवरेगा. साथ ही स्मार्ट उत्पादन इकाइयों, किस्म, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, निर्यात उद्योग आदि भी संबंधित हैं. हमारे नौजवान मंच मांग रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, एक ऐसा देश चाहते हैं जो अपना दरवाज़ा खोले. आवा टेक्नोपार्क इनमें से एक दरवाज़ा है. आवा टेक्नोपार्क का उद्घाटन करते हुए हम एक औद्योगिक कामयाबी की खुशी मना रहे हैं, इसे ज्यादा कर रहे हैं. निवेशकों की ओर से संदेश मिला है कि मॉरिशस भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार है. हम ठेकेदारों के लिए एक संदेश भेजना चाहते हैं, सरकार अच्छी उत्पादकता वाली, बदलाव लाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करेगी. नौजवानों को भी सूचित करना चाहेंगे कि आप लोगों का भविष्य यहाँ मॉरिशस में बन सकता है, आपके देश में आधुनिकतम क्षेत्रों में. दुनिया के लिए भी ये संकेत देना चाहते हैं कि मॉरिशस न केवल वैश्वीकरण में भाग लेना चाहता है, बल्कि मॉरिशस अपनी योग्यता, स्थिरता और एक्सलेंस लाना चाहता है.
4: टेक्नोलॉजी
1: पार्क के पूरा हो जाने के उपरांत 4,000 नौकरियां कायम किए जाने के अलावा यहाँ इमारत में 7 मंजिलें होंगी. 42 मिलियन यूरो अर्थात करीब 2.2 बिलियन रुपए का व्यापक निवेश किया जाएगा.
5: पहली जून से कैनल प्लस के ग्राहकों के लिए TF1 ग्रुप के चैनलों का प्रसारण बंद है. उनके पैकेज के अनुसार 5 चैनल उपलब्ध नहीं है, जिससे कई ग्राहक नाराज हैं. हालांकि कैनल प्लस और TF1 ग्रुप के बीच ये विवाद नया नहीं है. वर्ष 2018 से प्रसारण अधिकारों को लेकर दोनों के बीच कई बार मतभेद हुए हैं, जिसके कारण पहले भी इन चैनलों का प्रसारण बंद हो चुका है. यासीन दैन महमूद की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण.
6: कुछ ग्राहकों को चैनलों के बंद होने की सूचना उसी दिन एक संदेश के माध्यम से मिल गई, जबकि अन्य कई ग्राहकों को ये जानकारी कुछ दिनों बाद प्राप्त हुई. अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कैनल प्लस ने कहा कि उसके विभिन्न पैकेजों में उपलब्ध अन्य चैनल भी इसी प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं. ग्राहकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है. इस पूरे विवाद की शुरुआत मार्च 2018 में हुई थी, जब पहली बार TF1 समूह के चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया था. फ्रांसीसी अखबार ले मोंद के अनुसार TF1 समूह ने अपने चैनलों का प्रसारण जारी रखने के लिए कैनल प्लस से पैसे चुकाने की मांग की थी. हालांकि TF1 ने उस समय स्पष्ट किया

0: सकता था कि उसने प्रसारण बंद करने की कोई मांग नहीं की, बल्कि बातचीत के लिए अपनी सहमति जताई थी। एक महीने बाद प्रसारण फिर से शुरू हुआ और दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा आरंभ हुई। साल 2022 में यही विवाद फिर सामने आया। प्रसारण कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मतभेद के कारण कनाल प्लस ने एक बार फिर TFN समूह के चैनलों का प्रसारण निलंबित कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन लगभग दो महीने बाद दोनों पक्षों के बीच नया समझौता हो गया और चैनलों की वापसी हुई। वहीं 2026 में दोनों समूहों के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कनाल प्लस ने 31 मार्च को ही घोषणा कर दी थी कि TFN समूह के कई चैनल 30 जून से उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप में तो TFN समूह के सभी चैनलों का प्रसारण कनाल प्लस पर पूरी तरह बंद कर दिया गया।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मंगलवार को मौशमालो निगलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है। ये एक ऐसी त्रासदी है तो दम घुटने की स्थिति में तुरंत ही सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व पर जोर देती है। अधिकारीगण आगाह करते हैं कि मौशमालो गमी कैंडी लॉलीपॉप आदि के साथ साथ लीची अंगूर लोंगान जैसे फलों को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए क्योंकि इनके निगलने से दम घुटने का खतरा रहता है। क्रिस्टेल लुब्रास की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: मार्शमेलो कैंडी लॉलीपॉप चॉकलेट मूंगफली और साथ ही कुछ फल जैसे लीची और लोंगान, ये सभी चीज़ें बच्चों की पसंदीदा होती हैं, लेकिन यदि इन्हें उनकी उम्र के अनुसार न दिया जाए या बिना निगरानी के खाने दिया जाए तो ये गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
3: Pour les petits enfants de en dessous de 2 ans, quand on veut commencer cette alimentation, nous devons faire bien attention. Il y a des noix, c'est-à-dire pistache, amandes, etc. Il ne faut jamais donner aux enfants en entier. Sinon, on peut donner des noix, nous devons écraser, nous devons moulu en forme de poudre, nous garder dans son alimentation.
2: 2 ans, c'est comme un mauvais valet, bah, tu as nuts, des nahot, ou c'est kuchel, car powder, qui roupe, mais des. Un gourd, asani, c'est galé, mais attaque, sacté, hein. Marshmallow, adi, asani, c'est galé, mais chipak, sacté, hein.
3: Par exemple, nous gagnons la gomme, guimauve, c'est qu'il arrivait malheureusement, il y a un aliment qui est facile, il est assez gros, il est collé dans la gorge, il va descendre facilement.
2: Dam khutne ki shuruati lakshano ko turant pehchanna, bahut zaruri hai.
3: Si un enfant n'y commence à étouffer, n'importe quel âge, il est capable de tousser.
2: जब बच्चे का दम घुटता है तो उसे खांसी होती है, उसे खांसने देना चाहिए। यदि वो बेहोश होने लगे, रंग बदलने लगे तो तेजी से कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुरुआती सेकंड्स में क्या किया जाए?
3: Bon, ce sont des mouvements brusques et rapides qu'il faut faire. Okay? Et si là aussi l'enfant n'arrive pas à expulser ce qui fait cause le blocage, donc on retourne la tête ici, on tourne là la tête vers le bas, ok? Et là pareil, nous, là. La tête vers le bas, il nous donne un coup assez rapide sur le dos ici, ok? 5 fois. D'accord? Jusqu'à ce que l'enfant ait réussi à expulser ce qui fait bloquer. Et bien sûr, si l'enfant perd connaissance à ce moment-là, là, nous commençons par une mesure de CPA avec l'enfant. Et on appelle les secours toujours en attendant. Donc c'est 1, 2 et on remonte. C'est plus fort à l'intérieur et en forme de J. Ok, c'est un mouvement-là. Et si là aussi l'enfant n'a pas de récif, il est au bout de 5 ans, il n'a pas de tiré. Donc on fait l'enfant vers l'avant. On met une armée anti-homoplate, ok, on se discapule là. Et là, nous tapons 5 fois rapide. 1, 2, 3, 4, 5.
2: भोजन के दौरान बच्चों पर लगातार नजर रखना, उन्हें सही तरीके से बिठाकर खिलाना, उनकी उम्र के अनुसार खाना पीना देना दम घुटने के खतरों को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि जब किसी बच्चे का दम घुट रहा हो तो हर एक सेकंड बेहद कीमती होता है और सही समय पर उठाया गया सही कदम जान बचा सकता है।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में प्रवाल रेखाओं को खतरा हो रहा है। मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बागुली ने

0: अपना कैरियर इन नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स यानी कि मूंगा विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके। उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राष्ट्र संघ में समंदर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सारा ओनो की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्रवाह रेखा दुनिया के सबसे अधिक खतरे में पड़े इकोसिस्टम है। जलवायु परिवर्तन और एल नीनो जैसी घटनाओं के कारण समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। पिछले लगभग 30 सालों से प्रोफेसर रंजीत बाकुली इस विषय पर शोध कर रहे हैं। उनके शोध ने ऐसी एक पद्धति विकसित करने में मदद की जिससे कुछ प्रवाल को अत्यधिक गर्मी के प्रति अधिक सहनशील बनाया जा सके। हमारा शोध उन कोरल्स पर है जो ऊंचे तापमान का सामना कर सकते हैं। एल नीनो घटना बढ़ रही है। कोरल्स को कई मिलियन साल लग जाते हैं विकसित होने में, जबकि तापमान में बढ़ोतरी दशकों में हो जाती है। हम जीन्स को बदलने का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वे ऊंच तापमान का सामना कर सकें। शोध को हकीकत बनने के लिए ओडिसेओ में एक पायलट पर योजना चलाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस तथा ओडिसेओ के बीच साझेदारी के तहत ओडिसेओ मरीन स्टेशन कायम किया गया है। इसे बढ़ाने के लिए ज्यादा शोध और निवेश की जरूरत है। मॉरिशस के इस वैज्ञानिक के कार्यों को इसी महीने ओकलैंड न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल कोरल रीफ सिंपोजियम में विशेष सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मेलन प्रवाल भट्टियों पर केंद्रित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। मैं इस सम्मेलन में 8 PhD विद्यार्थियों को ले जा रहा हूँ, जहाँ हम अपना कार्य दिखाएंगे। मैं भी नानसन FAO के खोज को प्रदर्शित करूँगा। मुझे कोरल रीफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कोरल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए शोधकर्ताओं को ये सम्मान दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें उस समय मिल रहा है जब कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में समुद्री इकोसिस्टम पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया था।
0: मॉरिशस और सिंगापुर के बीच साझेदारी के लिए नई संभावनाएं आज पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम और सिंगापुर के उच्चायुक्त लिंग मिंग यांग के बीच रस्मी मुलाकात हुई। मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन मजबूत करने के साथ साथ निवेश आकर्षित करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंगापुर मॉरिशस को अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी देखता है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
2: मॉरिशस और सिंगापुर मजबूत साझेदारी को और भी सुदृढ़ करना चाहते हैं और नई संभावनाओं के लिए मार्ग खोलना चाहते हैं। दो छोटे द्वीपीय राष्ट्र जिनकी समान चुनौतियां हैं और जो कई क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने पोर्टलिस में सिंगापुर के उच्चायुक्त लिम मिंग यान के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत चली, खासकर मूल ढांचा, सार्वजनिक सेवाओं और जल संसाधन के क्षेत्रों में। इस मुलाकात के बाद सिंगापुर के कूटनीतिज्ञ ने मॉरिशस की क्षमता पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व पर बात की, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से।
3: These are areas that potentially we could work together, whether it is in the area of utility, infrastructure, water. From the Singapore perspective, we hope that there could be a greater connectivity and links between Singapore and Mauritius. And with that, we hope that there will be more opportunities for people from Singapore as well as the rest of Asia, East Asia, to make their way to Mauritius. From Singapore, they can come to Mauritius and also moving beyond that into the rest of Africa.
2: सिंगापुर के लिए मॉरिशस इलाके में प्रवेश पाने के वास्ते एक स्ट्रेटेजिक मंच है। निर्धारित परियोजनाओं को साकार करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बूस्ट टू लोकल प्रोडक्शन स्कीम अब सहकारी संगठनों के लिए उपलब्ध है। ये सहायता योजना कृषि एवं खाद्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रति परियोजना 3 लाख रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने मॉरिशस में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक नई रणनीतिक योजना तैयार करने के तहत आज सुबह आयोजित एक

0: कार्यशाला में ये घोषणा की। इसके साथ ही कोऑपरेटिव्स एक्ट में संशोधन करने की योजना है ताकि संगठनों में बेहतर कामकाज, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: मॉरिशस में कोऑपरेटिव्स की ओर से वार्षिक तौर पर कोई 5 बिलियन रुपए का कारोबार। इस सेक्टर को अतिरिक्त रूप से गतिशील बनाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजिक योजना तैयार की जा रही है। इस सिलसिले में संबंधित पार्टनरों को एक कार्य बैठक में जुटाया गया। फाइव डायमंड्स कोऑपरेटिव की नतारिया डेल्सन ने कहा,
2: मैं फेम वुमन बिजू मार्केट आ ला मेजों मे सेट अवेक कोऑपरेटिव की मो कैपेबल ए कुल मोबान प्रोडुई ए बान कू की जे दे नू सी बियन ए दे नू ए मो एनकोरेज मा ने ज़ोत मैडम ऑसी पा डेकोराजे विन वे कोऑपरेटिव।
1: इस नई स्ट्रैटेजिक योजना में ई कॉमर्स पर विशेष ध्यान केंद्रित ताकि मॉरिशस में कोऑपरेटिव्स को आधुनिक बनाया जाए और मध्यस्थों को हटाया जाए। Mauritius Network Services Limited के CEO Rajneesh Hawabhai ne kaha,
3: d'après une bonne recherche, on trouve au moins 30 services, 30 différents distincts services capables, non? Because low even vin avec un digital product identity, donc capable faire la traçabilité d'un produit depuis son commencement, depuis son origine jusqu'à la fin. Il y a un affaire qui est très porteur, qui est très bon pour la population, donc du bon qui nous capable de nous donner une opportunité pour grandir.
1: मंत्री आदिल अमियामिया ने समझाया कि इस स्ट्रेटेजिक प्लान का मकसद है आर्थिक और जलवायु चुनौतियों के चलते सहकारिता को ज्यादा उपरस्त और मजबूत बनाना। उन्होंने कहा,
4: secteur coopératif, on a l'impression que c'est une affaire du passé, mais bien au contraire, il y a pas seulement au niveau de l'agriculture, il y a au-delà de ça. Il y a le même jusqu'à financial services, par exemple, il y a une credit union. Et là, nous pouvons adapter nous à un changement qui est dans la loi. Par exemple, nous pouvons inclure AML, CFT, nous pouvons définir UBO dans un credit unions. Nous pouvons venir avec une nouvelle loi pour refléter avec tout un challenge qui est dans ce secteur-là.
1: D'autre part, le ministre a annoncé qu'il a lancé le Boost to Local Production Scheme qui a été lancé officiellement. इस सहायता योजना की बदौलत खाद्य सुरक्षा मजबूत करते हुए कृषि एवं खाद्य उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग हासिल करना है।
0: मॉरिशस में बहुत कम महिलाएं मछुआरी के तौर पर काम करती हैं। ये एक मुश्किल काम है और तब और भी जटिल हो जाता है जब समंदर में काम करने के साथ साथ मां होने की जिम्मेदारी भी निभाती है। इस अवधि के दौरान उनकी मदद के लिए फिशरमैन वेलफेयर फंड आर्थिक सहायता प्रदान करता है। मॉरिशस की जेल व्यवस्था का इस समय संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये ध्यान रखना है कि देश की कारीगर प्रणाली, कैदियों के मानवीय व्यवहार और जेल प्रबंधन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कितनी खड़ी उतरती है। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर कोलिन ओडोट ने देश के कई कैदखानों का दौरा किया। डिप्रेशन यानी कि तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। मॉरिशस में भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों ने एक साझा पहल शुरू की। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय रहते सहायता उपलब्ध कराना और इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मॉरिशस में इस समय करीब 4,600 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रही है। बजट 2026-2027 में छुट्टियों के दौरान उन्हें हफ्ते में 20 घंटे की जगह 30 घंटे काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे छात्रों को अपने खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी है वहां पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, जोरदार ट्रॉपिकल तूफान माइसाक ने दक्षिणी चीन पर प्रहार किया। कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है और 1,30,000 से ज्यादा लोगों को खतरे वाले इलाकों से हटाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। कई जगहों पर बाढ़ भी उतर आई है और भूस्खलन की भी खबरें हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के 90 ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार दूसरी रात के हमले किए गए हैं। ईरान ने इस बात की

पुष्टि की है उनके दक्षिणी तट पर धमाके किए गए हैं और गल्फ इलाके के उसके द्वीपों पर भी हमले हुए हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दिनों में 14 लोगों की मौत हो गई है। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रिन्यू किया गया।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान और कल सुबह थोड़े से बादल घेराएंगे और हल्की सी बारिश होगी, खासकर हवाई ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 5:45 बजे, जबकि कल सूर्योदय 6:46 पर।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

आइए शोक समाचार सुनते हैं। SSO स्ट्रीट ब्लॉक सी नंबर 6 पीतो में, SSO स्ट्रीट ब्लॉक सी नंबर 6 पीतो में 47 साल के 47 years old के श्री विकास चुलन जिन्हें सब लोग मुन्ना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ श्रीमती स्वस्ति चुलन के घर SSO स्ट्रीट ब्लॉक सी 6 पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। एवेन्यू बेटो कौन पासी कैथ्रो बोन में, एवेन्यू बेटो कौन पासी कैथ्रो बोन में 44 साल के 44 years old के श्री नारायण दत्त कुमार धनुकचंद जिन्हें सब लोग चंदन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर एवेन्यू बेटो कौन पासी कैथ्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोरिगांव की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। काली माता रोड लाल माटी में 66 साल के श्री इंद्रदेव पुनाई जिन्हें सब लोग ईश्वर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विदुला पुनाई के घर काली माता रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लाल माटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। कौन सिपियों पॉइंट पीमो में 52 साल की 52 years old की श्रीमती उमा भोला श्रीमती उमा

मां भोला, पैदाशी नाम झरी और जिन्हें सब लोग ललिता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर कौसिपियों पोतोपिमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। राहुल रिवेट स्ट्रीट मोंरोश बुबासे में, राहुल रिवेट स्ट्रीट मोंरोश बुबासे में 79 साल की, 79 years old की श्रीमती वेदावादी नारायण, जिन्हें सब लोग पैदाशी नाम कादेवालू और जिन्हें सब लोग पुष्पा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर राहुल रिवेट स्ट्रीट मोंरोश बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। नंबर 78 C राहुल रिवेट स्ट्रीट पोर्टलुई में, पचहत्तर साल के श्री गोविंदन कन्नुसामी, जिन्हें सब लोग सादा के नाम से भी जानते थे, और जो डीपीएम के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के घर नंबर 78 C राहुल रिवेट स्ट्रीट पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थैंगबाओ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। रुद बॉशेरी पेटी वेजे सैंपियर में 71 साल की, 71 years old की श्रीमती कमलावती लक्ष्मण, पैदाशी नाम महादुआ और जिन्हें सब लोग शोभा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके पति श्री ईश्वर दत्त लक्ष्मण के घर रुद बॉशेरी पेटी वेजे सैंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुस्तान सैंपियर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। इंग्लैंड में 76 साल के, 76 years old के श्री अनिरुद्ध कुमार चमरो, जिन्हें सब लोग जोहो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे यूके समयानुसार उन्हीं के घर से उठाकर इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM अकॉर्डिंग टू यूके टाइम। नंबर 10 एवेन्यू विल्सन बेलरोज में 92 साल की, 92 years old की श्रीमती सरोजिनी तिलक, पैदाशी नाम गोपाल और जिन्हें सब लोग जानी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के ढाई बजे उनके बेटे श्री देवानंद तिलक के घर नंबर 10 एवेन्यू विल्सन बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियानो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो आफ्टरनून एट 2:30। ब्रांच रोड लालमाटी में 67 साल की, 67 years old की श्री विनोद मतू, जिन्हें सब लोग पाकुन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती अंजनी मतू के घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 447 रॉयल रोड वैल्यू दुप्रेत में 68 साल के, 68 years old के श्री मुखाराम हुकुम, जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 447 रॉयल रोड वैल्यू दिप्रेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाए।

0: जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 11th of July 2026 at 10 AM। पायों के रोड मोसलमान सेंट अंतोन गुडलेंस में 77 साल की 77 years old की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाशी नाम जुधवा और जिन्हें सब लोग इंद्राणी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विमल राजकुमार के घर पायों के रोड मोसलमान सेंट अंतोन गुडलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 11th of July एज फ्रॉम 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: सच ए ब्यूटीफुल गाना, घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया कि बस चेहरा देखते ही देखते हम रह गए। और अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन है तो आपसे हम मांग करेंगे कि चांद का दीदार आज कर ही दीजिए। वेल शाम के 7:07 हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल थर्सडे इवनिंग, 9 जुलाई 2026। एक बार फिर से हमारा और आपका साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या साथ निभाने आई है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। और चलिए, यहाँ पर शो की शुरुआत में ही इतने सारे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद आप ज़रूर हमें फ़ोन करें। अभी के लिए क्या है ना, एक गाना हम चलाएंगे, गाने के बाद आपसे ज़रूर हम बात करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी फ़ोन करना शुरू कर दिया है तो चलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी लोगों से भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके हम फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही है। यस, लाइन खुली हुई है एज यूजुअल ऑन 4 2 8 3 5 4 2 4 2 5 पर आप ज़रूर हमें फ़ोन करिए और आपके मैसेजेस हम तक पहुँचाएँ। ऑन 5 4 9 9 12 9 4 5 4 9 9 12 9 4 आपके मैजिकल मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्यार से ही मुलाकात करने आए हैं और प्यार से ही आपको गाने सुनाएंगे और उतने ही प्यार से आप ज़रूर हमारे गीतों में खोए रहेंगे, इतनी गारंटी तो हम जरूर देते हैं। तो चलिए, यहां पर दिव्या का साथ है, योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर टिल 9 PM।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: सच बात है दोस्तों, कभी कभी जिंदगी और प्यार की हकीकत गाने में मिल ही जाता है। कहती है जिसको वो मोहब्बत वो हो तुम, और किसी को आपने मोहब्बत सोचा है और उनके बारे में आप बहुत कुछ सोच रखे हैं और शायद प्यार का इजहार इकरार किस तरीके से करना है, लेकिन आप कतरा रहे हैं और हेजिटेट कर रहे हैं। तो आपके इस हेजिटेशन को दूर भगाने के लिए हम लेकर आए हैं खूबसूरत गाने जिनको सुनने के बाद आप खुद उनको मैसेज भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। 7:20 दिव्या का साथ योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर रात्रि के 9 तक। चलिए, हमें मीला रामदिकल जी ने फ़ोन किया था एंड हम बात ही कर रहे थे और उनको हमने कहा लाइन पर रहने के लिए और उनसे हम गानों के बाद बात करते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जल्दी में है इसलिए हम आपसे संपर्क रखने की कोशिश कर रहे हैं मीला जी, लेकिन आपका फ़ोन नंबर लग नहीं रहा है। तो चलिए, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आप अगर चाहें तो दोबारा फ़ोन कर सकते हैं या फिर आपका मैसेज ही काफ़ी है, आपका मैसेज हमें मिल जाएगा। 7:21, चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। टू ऑल दोज जिनसे हमारी रोज़ बात होती है, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आज दूसरों को मौका दें। कभी कभी उनके मैसेज भी आते हैं और वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि बस उनको लाइन नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आज हम थोड़ा बहुत दूसरों को मौका देंगे। और कभी कभी जब दूसरे लोग फ़ोन करते हैं तो ऑफ़ एयर ही बात कर लेते हैं और उनको बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए, ऑफ एयर ही सही, लेकिन जो लोगों को लाइन नहीं मिलती है, आज आपको हम मौका देंगे। भले ही अगर आप हमसे ऑफ एयर बात करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, 7:21 एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त अपना डिनर ले रहे हैं, आपको हम विश करेंगे बन पीछे शुभ आहार। ऐसे ही खाने साथ साथ गानों का पूरा पूरा लुत्फ उठाते रहिए।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: हल्के ही सही, लेकिन कभी-कभी जब हम हल्के-हल्के बोलते हैं तब भी हमारी आवाज ऊंची तरीके से किसी के दिल तक पहुंच ही जाता है, और यही बहुत ही ज़रूरी बात है. द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और आपस में बहुत कुछ आप बोल नहीं पाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जिनसे आप प्यार करते हैं उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता है. ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा शख्स मिले ना तो यही हद से ज़्यादा काफ़ी है. 7:27, चलिए यहाँ पर प्रीति हैं हमारे साथ, अक्सर हमसे बातें करती रहती हैं और आज ख़ास मौका है इसलिए उन्होंने फ़ोन किया और कहती हैं आज मासी का बर्थडे है. तो चलिए, हेलो प्रीति, आपको नमस्कार.
1: हेलो, नमस्कार.
0: हाँ जी प्रीति, कैसे हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक. बताइए, आज आपकी मासी का बर्थडे है तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं?
1: उसका बर्थडे है, संगीता नाम है उसका. संगीता राम भगत.
0: ओके, संगीता जी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से. और आप
1: बेटी है?
0: हाँ जी,
1: दामाद है और उसकी पति की तरफ से. और मेरी नानी है, मेरी मम्मी और मेरी तरफ से.
0: ओके, पूरे परिवार की तरफ से. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.
1: गाना है आपके पास?
0: कौन सा गाना?
1: दिलवाले.
0: दिलवाले में कौन सा गाना आपको सुनना है?
1: मौका मिलेगा तो हम बता रहे
0: हैं. मौका मिलेगा तो ओके, हम ट्राई करते हैं और ये गाना आपके लिए हम बाद में जरूर चलाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, आज उनका बर्थडे है तो आप आपको इंतजार ज्यादा नहीं कराएंगे. और चलिए ये अगला गाना भी आपके नाम और आपकी मासी के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति, बाय
1: बाय.
0: और चलिए यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे बीच. हेलो जी.
2: हेलो.
0: हाँ जी, नमस्ते.
2: नमस्ते,
0: आपका नाम?
2: मैं
0: सुनीता जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक. बताइए, आपका काम हो गया है, आपने खाना खा लिया?
2: हाँ,
0: है
2: काम हो गया है, खाना अब खाएंगे, एक गीत सुनेंगे और खाना खाएंगे.
0: चलिए, और आपके वहाँ मौसम कैसा है?
2: मौसम आज सुहाना था. उधर मौसम ठीक नहीं था, बहुत खराब,
0: बहुत ही खराब था.
2: आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है, घूमने को मिला.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब मौसम अच्छा होता है ना तो मौके का फायदा उठाकर थोड़ा घूमना ही चाहिए. अब पूरी जिंदगी हम या तो काम करते हैं या फिर हमारी पूरी जिंदगी फैमिली को देखने में निकल जाता है और हमारे लिए भी टाइम नहीं मिलता है. सो ये आप बहुत ही अच्छा करते हैं, थोड़ा जब आपको वक्त मिले थोड़ा सा घूम लीजिएगा. चलिए,
2: हर महीने यानी कि जो ताजा माल हम उसमें है उसके उन लोगों के साथ कभी पिकनिक पर चले जाते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं.
0: वेरी नाइस.
2: और काम भी देखते हैं, घर बार भी देखते हैं.
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जिंदगी में बैलेंस का होना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा सा घूमना फिरना
2: और बात कर लेते हैं. आपके से गीत सुन लेते हैं.
0: थैंक यू सो मच सुनीता जी. एंड चलिए, आप

0: आपको कौन सा गाना सुनना है आज?
1: मैं प्रेम पुजारी का गाना सुनना चाहती हूँ, जिसके बोल है रंगीला रे तेरे रंग में यू रंगा है।
0: ओके, वैसे तो हमने कल कहा था अगर ओल्डीज इंस्टेड ऑफ ओल्डीज आप 90s का रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए हम चलाने की कोशिश करेंगे।
1: जी हाँ, मैं ये गाना आपके लिए, आपके टीम के लिए, भाई धर्म के लिए और मेरे फैमिली के लिए, सभी कोना परिवार के लिए, कलिया खेती परिवार के लिए और हानबिन परिवार के लिए, सीदाम परिवार के लिए और नाम परिवार के लिए, आमला परिवार के लिए और मेरे कजन रहती है प्लेंडे पपाई बोमांग रीना, उनके लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए ये गाना मांगना चाहती हूँ।
0: ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपको हम विश करेंगे बन अपेची।
1: धन्यवाद
0: मैं ऐसी। थैंक यू बाय। सो ये थी हमारी प्यारी सी सुनीता जी, एंड चलिए आप भी उस पार से हमारा साथ दे रहे हैं और आपको भी कोई गाना सुनना है या फिर आप भी हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ प्यार की बातें शेयर करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस या फिर आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 5499-1294 या फिर फ़ोन करने के लिए लाइन खुली हुई है ऑन 402-8035।
2: Evening Lounge.
3: RM2.
2: Radio Musti.

बिल्कुल दोस्तों, प्यार में एक दिल की जीत होती है और एक दिल की हार होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ से जीत ही होती है। क्या करें, अब प्यार में सब कुछ जायज़ है और कभी कभी हम डरते हैं ना। शायद आपने कभी इजहार इकरार किया होगा और आपको रिजेक्शन मिला होगा। अभी आपको टाइम लगता है हील होने में और हील हो जाने के बाद आपका दिल कहता है कि चलो एक बार फिर से प्यार करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला। लेकिन प्यार में मोहब्बत ना हो तो ज़िंदगी थोड़ी अधूरी हो जाती है, इसलिए प्यार करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। वेल, हम चाहते हैं कि आप प्यार के इस मैजिक को एक्सपीरियंस करें और एक्सपीरियंस इट ऑल अराउंड। ऑफ कोर्स RM2 में आपको मौका मिल रहा है कुछ खूबसूरत हसीन गीतों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाने के लिए टिल 9 PM। सो चलिए, दिव्या का साथ है, 7:45, आपके कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस की ओर हम बढ़ेंगे। नमस्ते जी, हाउ आर यू टुडे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके कज़िन

0: का बर्थडे है, येशना रामदयाल, उनको बहुत ही प्यार से हम विश करेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे और विशेस कमिंग फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा और उनको बहुत बहुत सारा प्यार. एंड साथ में अगला गाना जाएगा फॉर दारन श्वेता रवीश प्रीशा लवशान आपादू फैमिली ऑफ खुशनौर जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. खासतौर से ये गाना हमारी प्यारी सी प्रीति जी के लिए जिन्होंने फ़ोन किया था. अब आपने इतना बहुत ही मेहनत से डायल करके हमें फ़ोन किया और आपका गाना ना चलाया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. स्पेशली आपकी मासी का बर्थडे है आज, तो शायद उनको ये गाना सुनना है. तो चलिए प्यार से आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए ये खासतौर से आपके लिए गाना.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

0: You're listening to RM2 Radio Masti.
1: भाई देखिए मौका ऐसे ही नहीं मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी और चांस को क्रिएट करना होता है। अगर आपको लगता है कि मौका मिलेगा तब बता देंगे और मौका आपके सामने से गुजर के निकल जाएगा और आप वेट करते रहेंगे, इसलिए डोंट वेट, जस्ट कीप एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर द वन यू केयर। एंड अगर वो शख्स आपके दिल के एकदम करीब है तो उनको एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराना ये आपका रोज़ रोज़ फ़र्ज बनता है। चलिए यहाँ पर 7:52 हो चुके हैं और ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली फॉर अंतेश ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, एज यूजुअल कनेक्टेड हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच अंतेश हमेशा हमारा साथ देने के लिए और आपके फ़नी मैसेजेस के ज़रिए। हम थोड़ा हंसते हैं स्टूडियो में और अकेले ही सही, लेकिन आप हमें बहुत ही अच्छा कंपनी देते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप इस वक्त स्विट्जरलैंड से हमारा साथ दे रहे हैं एंड मेकिंग होम मेड पिज्ज़ा एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एट द सेम टाइम। चलिए आई एम वेरी श्योर कि आपका पिज्ज़ा तो एकदम यम्मी बनेगा, इतने खूबसूरत गाने चल रहे हैं और साथ में आपके हाथ में भी जादू तो है ही। चलिए पहली बार के लिए नहीं बल्कि बार बार हमारी और आपकी मुलाकात हो ही जाती है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, एंड जिसको और भी खास बनाने के लिए वी हैव योर मैसेजेस। एंड साथ में यहाँ पर किसी ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है। आप कहते हैं हाय हरे कृष्णा जी, प्लीज प्ले अ बर्थडे सॉन्ग फॉर माई पापा ज्ञान दत्त रघुनाथ, आज उनका बर्थडे है, उनको बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, रिक्वेस्टिंग द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर योर पापा एंड विशेज कमिंग फ्रॉम देव कृष्ण, आपका बेटा है और आपकी बहू है देविना, तेजस्वीर निवेदिता मानव और छोटा शिवंश की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं और बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड बर्थडे वाला गाना अभी के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल ये गाना उनके लिए हम ज़रूर चला रहे हैं। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोज जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है।

0: वैसे अगर देखा जाए तो सही मायने से हमेशा प्यार साथ देता ही रहता है। कुछ मंजिल दूर लगती है तो कुछ सफ़र कठिन लगता है, और कुछ कुछ ऐसे सफ़र भी होते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि दिल तन्हा सा हो गया है, लेकिन वही रास्ते पर जब कोई हमसफ़र मिल जाता है, जब कोई ऐसा जेन्युइन प्यार मिल जाता है, तो ऐसा लगता है आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इसको कहते हैं प्यार की ताकत, और प्यार में इतनी ताकत है कि आप बस पूरी दुनिया से लड़ जाओ। लेकिन प्यार को अगर प्यार से जीतना है तो इसमें जंग नहीं, बस प्यार की ही ज़रूरत होती है। चलिए उतने ही प्यार से एक बार फिर से आप लोगों से मिलने आ गए हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। सो जहां से भी साथ दे रहे होंगे, मे बी यू वर्किंग राइट नाउ, आपको भूख हार्ज, अगर आप लोग ड्राइव करके अभी वापस घर जा रहे हैं, कुछ लोगों का शायद ओवरनाइट था या फिर ओवर टाइम था, अभी आपका काम ख़त्म हो रहा है, थके हारे आप बस ड्राइव कर रही है, लेकिन हमारे गाने आपको थोड़ा बहुत एनर्जी दे रहा है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। तो चलिए स्टे कनेक्टेड विद RM2 एंड ऐसे ही खूबसूरत गीतों का पूरा पूरा फायदा उठाते रहिए।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

वेल रात्रि के 8:30 बज चुके हैं. दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. चलिए आपके कुछ मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं. दिल से दिल तक जुदा हुआ है माँ बेटी का रिश्ता, एक दूसरे के दर्द को बिना बोले समझ जाती है. लव यू मॉम, मिस यू अ लॉट फ्रॉम माला जी ऑफ सुल्फेरिनो. चलिए अपनी मम्मा को आप याद कर रही हैं और उनको हम भी बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और आपको भी हम बेइंतहा बेशुमार प्यार भेज रहे हैं. और ऐसे ही आप बस अपने पेरेंट्स से प्यार करते रहिएगा. और वैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स ऑलवेज ऑलवेज वेरी स्पेशल टू एवरी किड. चलिए यहाँ पर किसी ने कहा है हेलो आप हैं प्रीतम बी टू फ्रॉम पीतो लिसनिंग टू RM2 राइट नाउ. अगला गाना गुजार फॉर योर वाइफ वर्षा और आपको 90s के गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर.

और हम तो चाहते यही हैं कि ये नूर आपके चेहरे से कभी ना जाए, क्योंकि प्यार का नूर जब चेहरे पे झलकता है ना तो ये बहुत ही मैजिकल लगता है, और खुद ब खुद अगर आप नाभिक हो तो लोगों को समझ में आ ही जाता है कि शायद आपको प्यार हुआ है और ये साफ आंखों में झलक ही जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ और आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं।

0: हेलो दिव्या, हाउ यू? इट्स विदुषा फ्रॉम ब्रह्मस्थान. हे विदुषा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. मैं बहुत ही ठीक ठाक हूँ एंड आई होप यू आर डूइंग गुड एज वेल. रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सैयारा अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाएंगे. फिलहाल के लिए वी डोंट प्रॉमिस. एंड नेक्स्ट गाना गुजार फॉर हस्बैंड राज. आपकी बेटी है पोशिका, प्रिंस अक्षित फॉर हिंचू फैमिली. आपकी मामा है शर्मिला, डैड नारद और आपका भाई है लक्ष्य. साथ में वी हैव नकुल, वशिष. उनको आप बहुत बहुत ही प्यार भेज रही हैं क्योंकि उनको आप बहुत ही मिस कर रही हैं. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वक्त वो आपके साथ ज़रूर कनेक्टेड हैं रेडियो मस्ती के साथ एंड दैट दे आर लिसनिंग. हाय दिव्या जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. और कोई बात नहीं जी, आपको फ़ोन करने का मौका नहीं मिला. बेबी अंश के पास हूँ. प्लीज़ हमारे सभी दोस्तों के लिए और फैमिली के लिए अगला गाना और हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच. प्यारी से अनीता जी, आप हैफली कॉन्फ्लाग से अगला गाना ख़ास तौर से आपके नाम हम ज़रूर चलाएंगे. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. कीप ऑन लिसनिंग टू RM2 क्योंकि दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Well, it's 8:53 already. काश आप हमारे होते. जिंदगी में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे साथ नहीं होते हैं और जिनके साथ हम होते हैं उनसे शायद वो प्यार नहीं मिलता है. इसीलिए शायद कहते हैं कि some people are together but not in love and some people are in love but not together. ये जिंदगी की दस्तूर है और कभी-कभी दो प्यार करने वाले भी साथ मिलकर जिंदगी का बसर करते हैं और कभी-कभी प्यार नहीं होता है शुरुआत में और धीरे धीरे करके वो प्यार इतना मजबूत हो जाता है कि ये प्यार का रंग निकलने से भी नहीं निकलता है. बस प्यार ऐसा ही होना चाहिए. एंड हमेशा हम कहते हैं ना कि लव इज़ प्योर, लव इज़ लव. और उतने ही खूबसूरती से, उतनी ही प्योरिटी अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो लव विल जस्ट बी देयर फॉर यू ईच स्टेप ऑफ योर लाइफ. तो चलिए अभी के लिए तो बस टाइम हो चला है हमारे आपको बाय कहने के लिए. एंड जाते जाते अगला गाना गुज़ आउट स्पेशली टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ. हाय दिव्या जी, नमस्कार टू यू एंड ऑल योर टीम. होप यू आर फाइन. ठंडी सी मौसम वहाँ, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, 40 डिग्री की गर्मी. ओ माई गॉड. रीटा जी आप हैं मिलानो इटली से. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट एंड आई जस्ट होप कि यू आर डूइंग गुड एंड इस गर्मी में प्यार की ठंडक आप तक ज़रूर पहुंचा रही है. सो चलिए आपको भी शुभरात्रि एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सुनील जी आप हैं यूले से. आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल भी आ रहे थे. जब हमने उठाने की कोशिश की तो आपने फ़ोन रख दिया. तो चलिए अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू. आप हैं यूले से सुनील जी. एंड द नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड योर होल फैमिली, आपकी दो बेटियों के लिए. एंड यहाँ पर आपने मुझसे एक सवाल यहाँ पर किया है और ये जवाब तो ज़रूर कर आपको दे ही देंगे. वैसे आप मैसेजेस के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं और बहुत सारे सवाल भी करते हैं. तो चलिए धीरे धीरे करके आपके इन सवालों का जवाब तो हम ज़रूर देंगे, वो भी एक दिन जब आप आएंगे हमसे मुलाकात करने के लिए तो ये सवालों का जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे. फिलहाल के लिए चलिए ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड होल रघुबीर फैमिली ऑफ थ्रियोले एंड आपकी दो बेटियों के लिए स्पेशली. और आप हमेशा से ही अपनी बच्चों के बारे में बात करते आ रही हैं तो चलिए उनके नाम अगला गाना स्पेशली फॉर यू एंड योर फैमिली.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

Wishing you all a very good evening, my dear listeners. नीतू का प्यार भरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करे. Wednesday night है and it's your late night grooves. कुछ मधुर सुरीले गानों के साथ, क्योंकि आजकल मौसम कुछ बेमान सा है, बारिश का समय है. तो really hope you're having a great time on Radio Musti. तो बस ये सफर आप सब के लिए एकदम सुहाना बनाते हुए चलिए साथ निभाते चलेगा till midnight.

0: जब बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड सिनेमा की पहचान सिर्फ कहानी एक्टर्स या डायलॉग्स तक सीमित नहीं है। अगर किसी चीज ने हिंदी फिल्मों को दुनिया भर में अलग और खास बनाया है तो वो है गाने और डांस। सॉन्ग्स एंड डांस बॉलीवुड की रूह है, वो धड़कन जो कहानी को महसूस करवाती है और वो रंग जो इमोशंस को जिंदगी देता है।
1: Late night grooves.
2: RM2 Radio Musti.

बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब गीत बोलते हैं। प्यार का इजहार हो, जुदाई का दर्द, माँ की ममता, दोस्ती का जुनून या जिंदगी का फलसफा, हर भावना को एक सुर मिलता है। एक गीत कहानी को आगे बढ़ा देता है, कभी फ्लैशबैक बन जाता है, कभी फ्यूचर का इशारा देता है। इसीलिए बॉलीवुड में गाने कहानी का हिस्सा होते हैं। इंटरप्ट

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: Oh my God, what a lovely gana. अगर गीत जज्बातों की आवाज है तो नृत्य माने कि डांस इमोशंस का रूप है. डांस बॉलीवुड में सिर्फ कदमों को गिनती नहीं होता बल्कि जज्बातों की भाषा होता है. खुशी हो तो इनर्जेटिक स्टेप्स, दुख हो तो धीमी गति, प्यार हो तो नजाकत और जुनून हो तो तेजी. हर डांस अपनी अलग भावना लेकर आता है. बॉलीवुड डांस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये क्लासिकल, फोल्क और वेस्टर्न स्टाइल्स का सुंदर संगम है. कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा, लावणी से लेकर जैज, हिप हॉप और कंटेम्पररी तक सब कुछ एक ही फ्रेम में दिख जाता है.

बॉलीवुड में गाने अक्सर कहानी के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। पहली मुलाकात के गाने, प्यार का एहसास जगाता गीत सेपरेशन सॉन्ग या क्लाइमैक्स से पहले का इमोशनल नंबर, ये सब कहानी को और गहरा बना देते हैं। कई बार तो एक ही गीत पूरी फिल्म की पहचान बन जाता है और सालों तक लोगों के दिलों में बसा रहता है।

बॉलीवुड के गीतों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर उम्र और हर पीढ़ी के साथ चलते हैं। पुराने गाने शांत और गहरे होते हैं, 70s, 80s के गाने सोलफुल और रोमांटिक, 90s के गाने मेलोडियस और आज के गाने तो एनर्जेटिक और एक्सपेरिमेंटल। फिर भी चाहे जमाना बदले, गीतों का असर कभी कम नहीं होता।

बॉलीवुड के सॉन्ग्स और डांस लोगों को एक सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। खूबसूरत लोकेशंस, रंग बिरंगे कपड़े, बड़े सेट्स और एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा विजुअल बनाते हैं जो दिल को सुकून और आंखों को खुशी देता है। ये वही दुनिया है जहां दुख भी खूबसूरत लगता है और खुशी जश्न बन जाती है।

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

बॉलीवुड के गीत और डांस भारत की संस्कृति का दर्पण है। त्योहार हो, शादी, विदाई, डांडिया, होली, मेहंदी, हर संस्कार और परंपरा को गीतों और डांस के जरिए दुनिया तक पहुंचाया गया है। इसी वजह से बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी बन चुका है।

बॉलीवुड के गाने सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहते, वो शादियों में बजते हैं, सफर का साथी बनते हैं, तन्हाई में दिल को संभालते हैं और मुश्किल वक्त में हिम्मत देते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी के लम्हों को किसी न किसी बॉलीवुड गाने से जोड़कर देखते हैं।

0: सॉन्ग्स एंड डांस के बिना बॉलीवुड अधूरा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि जज्बातों का उत्सव है। बॉलीवुड के गीत और डांस हमें हंसना सिखाते हैं, रोना सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं और जिंदगी के रंगों को साथ जीना सिखाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बॉलीवुड सिर्फ देखा नहीं जाता, गाया और नाचा भी जाता है। टेक केयर, बाय बाय।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 Radio Musti.

0: फिर वही फुर्सत के रात दिन
1: RM2 Radio Musti.